0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में यात्रा भी करेंगे। पूनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में 3,700 मीटर लंबा डबल डेकर ढांचा बनाया गया है। इसमें आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली है जो परिचालन को सक्षम बनाने के लिए तैयार की गई है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शुभारंभ करेंगे। इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अंबा समुद्रम, परमकुडी और नमक्कल शामिल है। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। इसकी शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इसके अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की केंद्र की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी इसमें शामिल किया गया है ताकि प्रत्येक जिले के कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल अद्दीस अबाबा में अफ्रीका में भारत के मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका ग्लोबल साउथ, एकजुटता, रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता और साझा विकास की आकांक्षाओं पर आधारित गहरे संबंध साझा करते हैं। इससे पहले विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क रेजोल्यूटली।
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता करने में सक्षम हो। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को रूस के तेल शोधक कारखानों, विशेष रूप से डीजल ईंधन का उत्पादन करने वाली इकाइयों को निशाना बनाने को लेकर भी चेतावनी दी। श्री ट्रंप की टिप्पणी उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया मंच ट्रूथ सोशल पर कहा था कि रूस तत्काल अमेरिका और वैश्विक बाजारों के लिए 3,00,000 टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। भारत ने कहा है कि दिल्ली में कल हुई घटनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की चिंताएं निराधार है और ये देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप है। जिनेवा स्थित भारतीय स्थायी मिशन ने एक बयान में कहा कि अधिकारी कानून के अनुसार कार्य करते हैं और किसी भी शिकायत के निवारण के लिए न्यायालय सभी के लिए उपलब्ध है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात परिवर्तित रहेगा। यातायात पुलिस ने लोगों को यात्रा से पहले जानकारी लेने और गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है।

इस बीच उत्तर रेलवे ने घोषणा की है कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि संबंधित सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। भारत आज इंदौर

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: फेसबुक ने स्काई व्हाट्सएप इन लाइफ मान मोड़ काम इतनो आराम सो स्टार्ट अप योर डे विथ रेनबो फंडे। रेनबो फंडे

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज एक वर्ष पूरा हुआ। उत्तर रेलवे ने कहा, आज सभी रेल सेवाएं सामान्य समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। देवी दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय पर्व नवरात्रि धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ प्रारंभ। सऊदी अरब के अधिकारियों ने कहा, रियाद हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। और भारत आज शाम इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे। श्री मोदी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में पूनमल्ली बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन कॉरिडोर में यात्रा भी करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शुभारंभ करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अम्बासमुद्रम, परमकुडी और नमक्कल शामिल हैं।
1: प्रधानमंत्री सड़क विकास, बंदरगाहों और विज्ञान में नवाचार से जुड़ी कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कार्गो हैंडलिंग क्षमता का विस्तार करने और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखना और उद्घाटन करना शामिल है। श्री मोदी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मौजूदा मनाली रिफाइनरी में यूब ऑयल बेस्ड स्टॉक्स परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कामराजार बंदरगाह पर एक अतिरिक्त कोयला घाट परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे और कंटेनर टर्मिनल के लिए कैपिटल डेजिंग कार्यों की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी आईआईटी मद्रास में सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और चेन्नई के जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी शामिल किया गया है ताकि प्रत्येक जिले की कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके।
2: इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता, सिंचाई सुविधाओं, ऋण की उपलब्धता और फसल कटाई के बाद की आधारभूत संरचना में सुधार करना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्तरीय व्यवस्थाएं बनाई गई है। स्थानीय कृषि आवश्यकताओं के अनुरूप जिला कार्य योजनाएं तैयार की जाती हैं। वहीं 36 केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत 121 संकेतकों के माध्यम से प्रगति की निगरानी की जाती है। पहले वर्ष के दौरान योजना के लिए चुने गए सभी 100 जिलों ने अपनी कार्य योजनाएं तैयार कर ली हैं और उनका क्रियान्वयन जारी है। इन जिलों का औसत प्रदर्शन स्कोर अप्रैल 2026 में 18.85% से बढ़कर अगस्त 2026 में 46.89% हो गया। नितिका गुप्ता के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। अपनी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको गुजरात की बंदरगाह क्रांति के बारे में बता रहे हैं।
3: गुजरात के पास देश की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है, लेकिन दशकों तक इसका पूरा लाभ नहीं उठाया जा सका। तटरेखा को केवल भूगोल न मानकर औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखने के दूरदर्शी विजन के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने PPP मॉडल के साथ निजी निवेश को आमंत्रित किया। बंदरगाहों को बिजली, सड़क, रेल और औद्योगिक क्षेत्रों से इस तरह जोड़ा गया कि फैक्ट्री सीधे बंदरगाह और बंदरगाह सीधे वैश्विक बाजार से जुड़ सके। इसी मॉडल पर मुंद्रा, हजीरा और पिपावाव जैसे देश के प्रमुख निजी बंदरगाह विकसित हुए। गुजरात का यही सफल मॉडल आगे चलकर सागरमाला के रूप में राष्ट्रीय नीति बना, जिसके तहत देश के बंदरगाहों की क्षमता 2014-15 के 1561 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 2817 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो गई और प्रमुख बंदरगाहों पर टर्न अराउंड टाइम भी घटकर आधा हो गया। भारत की समुद्री उपलब्धियां और हरित पहलों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: देश के कुछ बड़े पोर्ट्स ने पहली बार एक साल में रिकॉर्ड 15 करोड़ टन कार्गो हैंडल किया है। इसमें हमारा कंडला का दीनदयाल पोर्ट भी शामिल है। देश के कुल समुद्री व्यापार कारोबार का लगभग एक तिहाई हिस्सा अकेले हमारे कच्छ के ही बंदरगाह से हैंडल होता है।
3: इसी विजन के साथ गुजरात के कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्य राहुल मोदी ने कहा,
5: जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल में उनकी जो सोच थी,

0: कि समुद्र और बंदरगाह केवल कार्गो हैंडलिंग के साधन नहीं है बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ इंजन बनने की पूरी ताकत रखते हैं। इसी सोच के साथ पोर्ट्स को उन्होंने रोड, रेलवे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, एसईजेड, लॉजिस्टिक, हिंटरलैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा।
1: समुद्री तटों को आर्थिक प्रगति के इंजन में बदलकर भारत का यह बंदरगाह आधारित विकास देश को वैश्विक समुद्री मंच पर अग्रिम पंक्ति में स्थापित कर रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात में परिवर्तन किया गया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और किसी भी यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। इस बीच उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
2: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली और निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
1: शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है। श्रद्धालु इसे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि माँ जगदम्बा का आशीर्वाद सभी के जीवन में प्रसन्नता, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में नवरात्रि के आगमन के साथ ही राज्य के सभी शहर भव्य रास गरबा समारोह के लिए तैयार हैं।
3: गुजरात में नवरात्रि का ये पर्व पारंपरिक गरबों प्रज्वलित कर, उपवास रखकर, घट स्थापन जैसे विशेष अनुष्ठानों और पारंपरिक रास गरबा नृत्य के साथ उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन बनासकांठा प्रतिष्ठित अंबाजी मंदिर, पावागढ़ के महाकाली मंदिर और कच्छ के माताना मढ़ मंदिर सहित राज्य के प्रसिद्ध मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। त्योहारों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुजरात पुलिस ने राज्य भर के 22,000 से अधिक स्थलों पर कड़े प्रबंध किए हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: तेलंगाना का विशेष पुष्प उत्सव बथुकम्मा कल एंगलीपुला बथुकम्मा के साथ शुरू हुआ। 9 दिन तक मनाए जाने वाले इस उत्सव में महिलाएं तंगेड़ू, गुनुनु, गेंदा और गुलदाउदी जैसे रंग बिरंगे फूलों से बथुकम्मा तैयार करती हैं। काला सागर में जहाज से बचाए गए 3 भारतीय नागरिक रोमानिया से अब स्वदेश लौट रहे हैं। बुखारेस्ट में भारतीय दूतावास ने बताया कि साहिल संधु, अश्विनी कुमार और हरमन सिंह को उनकी वापसी के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई गई है। काला सागर में सोमवार को जहाज एमवी रॉयद मम्मा दोव पर हुए हमले में घायल हुए क्रू सदस्यों में ये 3 भारतीय भी शामिल थे। सऊदी अरब में रियाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। घरेलू हवाई अड्डे पर कल हुए इस हमले में 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी एक एक नागरिक की जान गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में अफ्रीका के लिए भारत के मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका ग्लोबल साउथ, एकजुटता, रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता तथा साझा विकास की आकांक्षाओं पर आधारित गहरे संबंध साझा करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता करने में सक्षम हो। श्री ट्रंप की यह टिप्पणी उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर कहा था कि रूस तत्काल अमेरिका और वैश्विक बाजारों के लिए 3 लाख टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ 3रा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और

0: Swahili FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आज का आपका होस्ट आरजे गंधर्व। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1, दिल से दिल तक। दोस्तों जरा सोचिए, अगर मुंबई की लोकल बोलने लगी तो सुबह 8:47 हैं, चर्चगेट जाने वाली एक लोकल प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, अचानक वो बोल पड़ती है, अरे भाई चढ़ना है तो चढ़ो, लेकिन पहले अंदर वालों को तो उतरने दो। और आप जो दरवाजे पर खड़े होकर दुनिया की सारी परेशानियां सोच रहे हो, जरा अंदर भी आ जाओ। लोकल कहती है, मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैन को फर्श पर बैठकर सफर करते देखा है, मैंने कॉलेज के बच्चों को रिजल्ट से पहले भगवान को याद करते देखा है, और मैंने उन लोगों को भी देखा है जो फोन पर कहते हैं बस बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। 5 मिनट बेटा, तू तो अभी भी ठाणे में ही है। लेकिन मजाक अपनी जगह, इस शहर की धड़कन सिर्फ इसकी रफ्तार में नहीं है, इसके लोगों में है। तो चलिए आज सफर करते हैं उसी लोकल के साथ जो हमें रोज कहीं पहुंचाती है और कभी कभी खुद से भी मिलवाती है।

मुंबई की लोकल कहती है, तुम लोगों को लगता है कि तुम सिर्फ ऑफिस या कॉलेज जा रहे हो, लेकिन मुझे पता है तुम सब अपने साथ कितनी सारी कहानियां लेकर चलते हो। वो खिड़की के पास बैठी लड़की हर रोज एक ही स्टेशन पर लड़के को देखती है, दोनों की आंखें मिलती है, दोनों मुस्कुराते हैं, लेकिन बात कोई नहीं करता। और वो अंकल रोज अखबार पढ़ते हैं, अखबार में क्या छपा है ये कम पता चलता है, लेकिन बगल में कौन किससे लड़ रहा है इसकी पूरी जानकारी है। किसी डिब्बे में दोस्तों का शोर है, किसी में इंटरव्यू का डर, कोई पहली नौकरी के लिए जा रहा है तो कोई महीने की आखिरी सैलरी से घर चलाने का हिसाब लगा रहा है, और इन सब के बीच दो अनजान लोग रोज एक ही सफर करते हैं बिना एक दूसरे का नाम जाने। शायद मुंबई की सबसे खूबसूरत बात यही है, यहां लाखों लोग अपने साथ सफर करते हैं लेकिन हर किसी की मंजिल अलग होती है। तो अगर आज आपके बगल में कोई चुपचाप बैठा हो तो याद रखिए, हो सकता है उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा स्टेशन हो जहां वो बहुत दिनों से उतरना चाहता हो।

अब जरा मुंबई की लोकल का दूसरा रूप सुनिए। जैसे ही बारिश शुरू होती है ना, लोकल कहती है, वाह रे मुंबई, बादल अभी ठीक से बरसे भी नहीं और तुम लोगों ने मुझे ही जिम्मेदार ठहरा दिया। पानी पटरियों पर आ जाए, सिग्नल रुक जाए, ट्रेन लेट हो जाए तो गुस्सा मुझ पर? अरे भाई, मैं ट्रेन हूँ, वरुण देवता की मैनेजर नहीं। लेकिन बारिश, बारिश में इस शहर का एक अलग ही चेहरा दिखता है। प्लेटफॉर्म पर भीगता हुआ कुली, छाता संभालती हुई कोई माँ, जूते साथ में लेकर दौड़ता हुआ ऑफिस जाने वाला लड़का, और वो चाय वाला जिसकी आवाज बारिश के शोर में भी सुनाई देती है। लोकल कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ लोगों को यहां से वहां पहुंचाती हूँ? अरे मैं तो तुम्हारे सब्र का इम्तिहान भी लेती हूँ। और हाँ, जब ट्रेन लेट हो जाए तो फोन पर घर वालों को सिर्फ इतना मत कहना कि लोकल लेट है, कभी ये भी कहना कि मैं ठीक हूँ, बस पहुँचने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि इस शहर में किसी का इंतज़ार करना भी प्यार जताने का एक तरीका है। बारिश हो, देरी हो या मुश्किल सफ़र, मुंबई रुकती नहीं, थोड़ी झुंझलाती है, थोड़ा हँसती है और फिर चल पड़ती है।

0: मुंबई लोकल ट्रेन की एक बात आपको बताऊं, दिन भर में हजारों चेहरे देखती हूं, सुबह वही चेहरे उम्मीद लेकर निकलते हैं और शाम को उन्हीं चेहरों पर थकान होती है। किसी की नौकरी में आज डांट पड़ी है, किसी का इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, कोई घर लौटते हुए सोच रहा है कि इस महीने का किराया कैसे भरेगा, और कोई ऐसा भी है जो पूरी ट्रेन में लोगों से घिरा होने के बावजूद भी बहुत अकेला है। लोकल कहती है, मैं चाह कर भी तुमसे पूछ नहीं सकती कि क्या हुआ, बस तुम्हें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ले जा सकती हूँ। लेकिन एक बात कहूँ, हर दिन अच्छा होना जरूरी नहीं है, हर दिन जीतना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी घर लौट आना ही उस दिन की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। कभी माँ के हाथ का खाना, कभी किसी दोस्त का मैसेज, कभी घर पहुंचकर जूते उतारने का सुकून, छोटी छोटी चीजें जिंदगी को दोबारा शुरू करने की ताकत देती है। इसलिए अगली बार जब आप लोकल में किसी थके हारे चेहरे को देखें तो उसको जज मत करो। हो सकता है वो ऐसी लड़ाई लड़ रहा हो जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। मुंबई में हर कोई भाग रहा है, लेकिन किसी को कभी ना कभी बस थोड़ी राहत चाहिए।
1: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान CP ग्राम्स की समाधान दीदी।

0: जा।
1: मस्त मुंबई की इस लोकल का संगीतमय सफर अब अपने आखिरी स्टेशन पर पहुंच गया है दोस्तों। अब आप सुनेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम, वतन का राग।
2: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है डॉक्टर रुखमाबाई राउत। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, दिल्ली से राजेश कुमार और नांदेड़ महाराष्ट्र से सुनैना संतोष भाकरे। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
3: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
4: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
3: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
4: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
3: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

वतन का राग कार्यक्रम में आज चर्चा आधुनिक भारत के इतिहास के एक ऐसे चरित्र की, जिन्होंने समय की देहरी पर खड़े होकर अपने युग को देखा और आने वाले समय के लिए भाषा, राष्ट्र चेतना और संस्कारों के ऐसे दीप जलाए जिसके उजाले में भारत की आत्मा आलोकित है। उन्होंने भारतीय स्वाधीनता संघर्ष का ताप सहा, जेल यात्राएं की, दूसरी ओर साहित्य की शीतल छाओ में समाज को विचार दिए। उनकी कलम में भारतीयता का स्पंदन है और मातृभाषा उनके लिए केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, अपनी मिट्टी से जुड़ी पहचान थी। भारत के वो महान सपूत थे सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास का जन्म 16 अक्टूबर सन 1896 को जबलपुर में हुआ था। ये एक अत्यंत समृद्ध और प्रतिष्ठित परिवार था। उनके दादाजी राजा गोकुलदास महाकौशल और मध्य प्रांत के सबसे धनाढ्य मालगुजार और समाजसेवी थे। ब्रिटिश हुकूमत ने उनके परिवार के जनहितैषी कार्यों और उनके प्रभाव को देखते हुए उन्हें राजा की वंशानुगत उपाधि प्रदान की थी। सेठ गोविंद दास के पिता का नाम सेठ जीवन दास था, जिन्होंने अपने पारिवारिक व्यवसाय और प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाया। ऐसे राजसी वातावरण में पलने बढ़ने के बावजूद गोविंद दास जी का रुझान सादगी, अध्यात्म और ज्ञानार्जन की ओर रहा। उनकी आरंभिक शिक्षा किसी औपचारिक विद्यालय में नहीं, बल्कि उनके घर पर ही बड़े विद्वान आचार्यों के सानिध्य में हुई। घर पर ही शिक्षा ग्रहण करते हुए

उन्होंने संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती भाषाओं पर असाधारण अधिकार प्राप्त कर लिया था। स्वाध्याय की अद्भुत ललक के कारण उन्होंने किशोरावस्था में ही वेद, उपनिषद, महाभारत, पुराण, बौद्ध तथा जैन दर्शन का विशद अध्ययन कर लिया था। साथ ही उन्होंने शेक्सपियर, इब्सन और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे पश्चिमी साहित्यकारों को भी पढ़ा। जब सेठ गोविंद दास युवावस्था में प्रवेश कर रहे थे, तब संपूर्ण भारतवर्ष स्वाधीनता आंदोलन की ज्वाला से सुलग रहा था। सन 1920 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया, तब उनके सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता विरासत से प्राप्त सुख सुविधाओं के भोग का था और दूसरा गांधी जी के आह्वान पर स्वाधीनता आंदोलन में कांटों भरी राह पर चलने का। सेठ गोविंद दास ने दूसरा मार्ग चुना।

इस तरह सेठ गोविंद दास भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा उनके परिवार को मिली राजा की उपाधि और सरकार द्वारा प्रदत्त सुख सुविधाओं का बहिष्कार किया। सेठ गोविंद दास ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और खादी को जीवन भर के लिए अपना लिया। सन 1921 में जब गांधी जी जबलपुर आए तो सेठ गोविंद दास के इस त्याग और स्वाधीनता के प्रति उनके समर्पण को देखकर वो भाव विभोर हो गए। सन 1923 में जबलपुर से झंडा सत्याग्रह आरंभ हुआ। ये भारतीय स्वाधीनता संग्राम का एक ऐतिहासिक शांतिपूर्ण आंदोलन था जो राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार को लेकर आरंभ हुआ था। इसकी शुरुआत 18 मार्च सन 1923 को जबलपुर के टाउन हॉल से हुई। सेठ गोविंद दास ने इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी धन शक्ति और संगठन क्षमता से इसे राष्ट्रव्यापी बनाने में विशेष योगदान दिया। झंडा सत्याग्रह में उनकी भूमिका ऐसी थी कि वो तभी से महाकौशल की जनता के प्रमुख प्रतिनिधि के तौर पर उभरे। सभी ने उन्हें प्रेम से काका साहेब कहकर पुकारना शुरू किया। सन 1929 में सेठ गोविंद दास ने द्वारका प्रसाद मिश्र के साथ लोकमत नामक राष्ट्रवादी हिंदी समाचार पत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में वो सघन रूप से सक्रिय हो गए। असहयोग आंदोलन हो, नमक सत्याग्रह हो या भारत छोड़ो आंदोलन, उन्होंने सभी में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस तरह स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उन्होंने महाकौशल और मध्य प्रांत का कुशल नेतृत्व किया। स्वाधीनता संग्राम के दौरान वो बार बार गिरफ्तार किए गए। उन्होंने 8 साल से अधिक

समय जेल के भीतर काटा। जेल की कठोर यातनाएं, पारिवारिक संपत्ति की कुर्की और बिगड़ते स्वास्थ्य ने भी उनके संकल्प को कमजोर नहीं पड़ने दिया। वो महात्मा गांधी, देशबंधु चितरंजन दास और सरदार पटेल जैसे नेताओं के निकट संपर्क में रहे। इतना ही नहीं, देश की संसदीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में भी उनका विशेष योगदान था। मात्र 27 वर्ष की आयु में ही वो केंद्रीय विधानसभा के सदस्य चुने गए, जहां वो लाला लाजपत राय जैसे दिग्गज नेताओं के साथ ब्रिटिश हुकूमत की जन विरोधी नीतियों को बेनकाब करते रहे। वो भारत की आजादी से पहले केंद्रीय असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स के निरंतर सदस्य रहे। भारत की आजादी के बाद जब भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, तो सेठ गोविंद दास को मध्य प्रांत से इसका सदस्य चुना गया। संविधान सभा के भीतर उन्होंने एक अत्यंत प्रखर और दूरदर्शी नीतिकार की भूमिका निभाई। उन्होंने भारत के संविधान में नागरिकों के मूलभूत अधिकारों, पंचायती राज व्यवस्था, कृषि संरक्षण और भाषाई अस्मिता को शामिल करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनता के बीच उनकी अपार लोकप्रियता थी। जबलपुर संसदीय क्षेत्र से वो लगातार सांसद निर्वाचित होते रहे। सन 1957, 1962 और 1967 में उन्हें लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संसद के भीतर वो केवल एक राजनीतिज्ञ नहीं, बल्कि देश की व्यवस्था को सुचारू बनाने वाले नीतिकार थे। उन्होंने सदैव भारत और भारतीयता के जय विजय की कामना की।

सेठ गोविंद दास राजभाषा हिंदी के संरक्षक और भारतीय संस्कृति के अमर संवाहक थे। यदि स्वाधीनता संग्राम उनके जीवन का मुख्य अध्याय था तो हिंदी को उसका राष्ट्रव्यापी गौरव दिलाना उनके जीवन की परम उपलब्धि थी। संविधान सभा में राजभाषा का प्रश्न सबसे अधिक संवेदनशील और बहस का विषय था। सेठ गोविंद दास ने राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, गोविंद वल्लभ पंत आदि के साथ मिलकर हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिलवाने के लिए ऐतिहासिक मोर्चा संभाला। संविधान सभा के भीतर उन्होंने अंग्रेजी के वर्चस्व का अकाट्य तर्कों से खंडन किया। उनका स्पष्ट मानना था कि यदि भारत को एक सूत्र में पिरोना है और लोकतंत्र को भारत के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है तो शासन प्रशासन की भाषा हिंदी और अन्य प्रांतीय भाषाएं ही होनी चाहिए। सेठ गोविंद दास का मानना था कि जब तक भारत अपनी शासन व्यवस्था और संसद का कार्य अपनी राष्ट्रभाषा में नहीं करेगा तब तक भारत के आम नागरिक को इस बात की अनुभूति नहीं होगी कि देश वास्तव में आजाद हो गया है। सेठ गोविंद दास, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन और सेठ गोविंद वल्लभ पंत जैसे दिग्गज नेताओं के प्रयास से ही अंततः 14 सितंबर सन 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। सेठ गोविंद दास का व्यक्तित्व अद्भुत था। वो स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, संसदीय व्यवस्था के अग्रणी नेता थे, तो दूसरी ओर वो हिंदी साहित्य के सबसे उर्वर और महान नाटककारों में से एक थे। राजनीतिक और सामाजिक जीवन की व्यस्तताओं के बीच भी उन्होंने साहित्य सृजन के लिए समय निकाला और हिंदी साहित्य को अपनी अनमोल कृतियों से समृद्ध किया। सेठ गोविंद दास ने 100 से अधिक नाटकों और एकांकियों की रचना की। उनके नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो केवल मनोरंजन के लिए नहीं लिखे गए थे बल्कि उसमें भारतीय इतिहास, पौराणिक मूल्यों, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन और युगबोध की गूंज थी। उनके प्रमुख ऐतिहासिक और पौराणिक नाटकों में कर्तव्य, हर्ष, शशिगुप्त, अशोक, कुलीनता और शेरशाह विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन नाटकों के माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल चरित्रों को पुनर्जीवित कर राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। उनके सामाजिक नाटकों में प्रकाश, विकास, बड़ा पापी कौन और गरीबी या अमीरी प्रमुख हैं, जिनमें उन्होंने सामाजिक विसंगतियों और वर्ग संघर्ष पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत जैसे एकांकी संग्रहों की भी रचना की। इसके साथ ही उन्होंने उपन्यास, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण भी लिखे। उनकी आत्मकथा एक कालजयी रचना है जो आत्मनिरीक्षण शीर्षक से 3 खंडों में प्रकाशित हुई। ये कृति 20वीं सदी के पूर्वार्ध के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, मध्य भारत के राजनीतिक इतिहास तथा तत्कालीन सामाजिक जीवन का अत्यंत प्रामाणिक, निष्पक्ष और ऐतिहासिक दस्तावेज है। उन्होंने छुआछूत और जातिभेद के निवारण के लिए अभियान चलाए। वो भारतीय कृषि का आधार गौवंश को मानते थे, इसलिए उन्होंने सदा ही गौ संरक्षण के लिए आवाज उठाई। इसके साथ ही वो स्त्री शिक्षा के भी प्रबल पक्षधर थे। सेठ गोविंद दास को सन 1961 में पद्मभूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। आजीवन भारत और भारतीय संस्कृति के लिए कार्य करते हुए उन्होंने 18 जून सन 1974 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि सेठ गोविंद दास का जन्म कब हुआ था? सवाल एक बार फिर सुन लें, सेठ गोविंद दास का जन्म कब हुआ था? आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल को रवाना करेंगे। कोची में बना तीसरा पनडुप्पी रोधी युद्धपोत मंगरोल कल मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल संजय वात्सायन करेंगे। भारत आज इंदौर में वेस्ट इंडीज के साथ तीसरा T20 मैच खेलेगा। ये मैच होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा। माँ दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय पर्व नवरात्रि आज धार्मिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ शुरू हो रहा है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है।

हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफएम रेनबो में। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1 दिल से दिल तक। नमस्ते भारत में आपका स्वागत है। आज है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड यानी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये दिन सिर्फ बेटियों का उत्सव मनाने का दिन नहीं है, बल्कि खुद से एक सवाल पूछने का भी दिन है। क्या हम अपनी बेटियों को वही आज़ादी, अवसर और सम्मान दे रहे हैं जो हम अपने बेटों को देते हैं? जब घर में बेटा पैदा होता है ना, तो अक्सर कहा जाता है कि वो बड़ा होकर परिवार का नाम रोशन करेगा। लेकिन जब बेटी पैदा होती है, तो क्या हम उससे यही कहते हैं कि वो अपने सपनों से दुनिया में भी पहचान बनाए? बेटी किसी की जिम्मेदारी भर नहीं है, वो एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है, एक संभावना और पूरा भविष्य है। उस भविष्य को उड़ान देने की शुरुआत हमारे घर से ही होती है। हमें बेटियों को सीमाओं में बांधने के बजाय उनके सपनों को समझना चाहिए, उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहिए कि उनकी इच्छाएं भी महत्वपूर्ण हैं। बेटी को अवसर देना समाज पर एहसान नहीं, बल्कि उसका अधिकार सुनिश्चित करना है।

दोस्तों, किसी लड़की को शिक्षित करना सिर्फ उसे किताबें पढ़ाना नहीं है, ये उसे अपने अधिकार समझने और सही गलत में फर्क करने की ताकत देता है। शिक्षा उसे अपने फैसले खुद लेने और आत्मविश्वास से जीवन जीने का अवसर देती है। एक पढ़ी लिखी लड़की अपने जीवन के बारे में बेहतर निर्णय ले सकती है, वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती है और परिवार के विकास में योगदान दे सकती है। वो अपने बच्चों को भी बेहतर शिक्षा और संस्कार दे सकती है। लेकिन आज भी कई लड़कियां सपने आर्थिक तंगी के कारण अधूरे रह जाते हैं। कई बार कम उम्र में शादी, घरेलू जिम्मेदारियां और सामाजिक सोच में बाधा बन जाते हैं। हमें समझ

0: समझना होगा कि बेटी की पढ़ाई कोई एहसान नहीं, उसका अधिकार है। जिस घर में बेटी की पढ़ाई के लिए सपने देखे जाते हैं, वहां बेटी की शिक्षा को भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए। स्कूल तक पहुंच, सुरक्षित वातावरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर लड़की का अधिकार है। उसे केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं, जीवन समझने के लिए भी शिक्षित करना जरूरी है। शिक्षा उसे सवाल पूछना, अपनी बात रखना और अन्याय का विरोध करना सिखाती है। ये उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे गंधर्वा। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1, दिल से दिल तक। दोस्तों, सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ किसी लड़की से ये कहना नहीं है कि वो कुछ भी कर सकती है। सशक्तिकरण का अर्थ है उसे सचमुच वो करने का अवसर देना। अगर बेटी डॉक्टर बनना चाहती है तो उसे पढ़ने और आगे बढ़ने का अवसर चाहिए। अगर वो खिलाड़ी बनना चाहती है तो उसे मैदान, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अगर वो वैज्ञानिक, कलाकार, अधिकारी या उद्योगी बनना चाहती है तो उसके सपनों को गंभीरता से लेना चाहिए। उसकी पसंद हमारे विचारों से अलग हो तब भी हमें उसे सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। बेटियों को आत्मविश्वास देने के लिए बचपन से ही अपनी बातें आगे रखने की आज़ादी दें। उन्हें सवाल पूछने, गलतियों से सीखने और निर्णयों में भाग लेने का अवसर दें। हर निर्णय उनके लिए लेने के बजाय उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया समझाएं। इसमें उनमें जिम्मेदारी, विवेक और आत्मनिर्भरता विकसित होगी। आत्मनिर्भरता की शुरुआत केवल कमाने से नहीं होती, ये तब शुरू होती है जब लड़की को अपने जीवन के बारे में सोचने का अधिकार मिलता है। जब उसकी राय को महत्व दिया जाता है तो उसका आत्मविश्वास मजबूत होता है। जब उसे असफल होने की अनुमति मिलती है तो वो सफलता के लिए बेहतर तैयार होती है। बेटी को सुरक्षा के नाम पर हमेशा नियंत्रित करने के बजाय सक्षम बनाना जरूरी है। उसे अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों और संभावनाओं की जानकारी दीजिए। उसके सपनों को परिवार की प्रतिष्ठा से छोटा मत समझिए, क्योंकि सशक्त बेटी अपने साथ साथ पूरे समाज को आगे ले जाती है।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे गंधर्वा। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1, दिल से दिल तक। आज हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे हैं। बेटियों की सुरक्षा एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन सुरक्षा का अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि हम लड़कियों की आज़ादी सीमित कर दें। अक्सर हम बेटियों से कहते हैं, देर से मत आना, वहां मत जाना और अकेले बाहर मत निकलना। सावधानी जरूरी है, लेकिन सारी पाबंदियां सिर्फ लड़कियों पर ही क्यों? हमें ऐसा समाज बनाना है जहां लड़कियां सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें, जहां उनकी सहमति का सम्मान हो और उनकी आवाज को गंभीरता से सुना जाए, जहां उत्पीड़न के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो और गलत व्यवहार करने वाले को जिम्मेदार ठहराया जाए। सुरक्षा का भार केवल लड़की के कपड़ों, व्यवहार या समय पर डालना उचित नहीं है। परिवारों को बेटियों पर भरोसा करना और उन्हें आवश्यक सुरक्षा कौशल सिखाना चाहिए। स्कूलों में सुरक्षित वातावरण, शिकायत व्यवस्था और संवेदनशील शिक्षा होनी चाहिए। कार्यस्थलों पर सम्मानजनक व्यवहार और प्रभावी सुरक्षा नीतियां लागू होनी चाहिए। लड़कों को भी बचपन से सम्मान, सहमति और समानता का अर्थ सिखाना होगा।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे गंधर्व। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1, दिल से दिल तक। नमस्ते भारत का ये म्यूजिकल सफर अभी खत्म होने जा रहा है दोस्तों। जल्द ही वापस मुलाकात होगी। एक नई आवाज आपसे मिलने के लिए बेताब है, आपकी बातें सुनने के लिए, आपके पसंदीदा गाने सुनने के लिए बेताब है। ठीक 11 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार, मगर उससे पहले सुनते हैं नमस्ते भारत सेगमेंट का ये आखिरी गाना।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल 107.1 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 10:57 का वक्त हो गया है। इस घंटे के कुछ प्रमुख समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में अफ्रीका के लिए भारत के मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका के बीच ग्लोबल साउथ की एकजुटता, रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता और साझा विकास की आकांक्षाओं पर आधारित गहरे संबंध हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात का संयुक्त सैन्य अभ्यास माउंटेन गार्जियन 2026 उत्तराखंड के चौबटिया स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोट में जारी है। 5 से 18 अक्टूबर तक चलने वाले इस 14 दिवसीय अभ्यास में दोनों देशों के कुल 92 सैनिक भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मुंबई और आसपास के इलाकों में आसमान साफ रहेगा। हालांकि शहर और आसपास के इलाकों में गर्मी और उमस बने रहने की संभावना है। इंडियन सुपर लीग 2026-27 के पहले दिन कल बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली को 3-2 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। बेंगलुरु के श्री कांति रवा स्टेडियम में फुटबॉल क्लब गोवा और चेत्रियन फुटबॉल क्लब के बीच मुकाबला 1-1 से बराबर रहा। दोनों टीमों को 1-1 अंक मिला। प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार का यह अंक यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और ठीक 11 बजे आप सुन सकेंगे पोस्ट बॉक्स 111।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: लेकर आते हैं हम जज्बातों के नए रंग,
2: मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी,
1: जो छू लेते हैं आपका मन।
2: मस्त मगन बस तेरा नाम दोहरा,
1: हर आरजे का है एक अलग ही रंग।
2: ओ रंग रे
1: क्योंकि यहाँ से हम लेकर आते हैं बातें दिल से, जो 511
3: नमस्कार। कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं निशा भारद्वाज अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स 111 माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अपनी मन की बात में लिए गए विभिन्न विषयों में से किसी एक विषय पर केंद्रित होता है। माननीय प्रधानमंत्री ने अगस्त और सितंबर माह में आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे 100 सप्ताह के अभियान नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का उल्लेख किया है। तो आज के हमारे कार्यक्रम का विषय भी यही है, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। विकसित भारत के लिए देश में युवाओं का नशा मुक्त होना क्यों आवश्यक है और इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसी समस्त जानकारी देने के लिए आज आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार में सचिव श्री सुनील पालीवाल जी। नमस्कार सर, और बहुत स्वागत है आपका।
4: बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद निशा जी।
3: श्रोताओं, ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत एक युवा देश है और यही युवा शक्ति हमारे देश को विकसित भारत बनाने का सबसे बड़ा आधार है। लेकिन इस सुनहरे भविष्य की राह में नशा एक ऐसी दीवार है जो हमारे युवाओं की क्षमता को कमजोर करती है। तो इससे पहले कि हम आज की अपनी बातचीत का क्रम आगे बढ़ाएं, आइए पहले सुनते हैं मन की बात कार्यक्रम का वो अंश जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय का उल्लेख कर रहे हैं।
5: मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध, ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है, एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं। यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं।
3: तो श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और हमारे साथ हैं युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार में सचिव श्री सुनील पालीवाल जी। तो सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध नशा मुक्त भारत अभियान आज एक बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन बन चुका है। इस अभियान का असली उद्देश्य क्या है? भारत के युवाओं के लिए और देश को आगे बढ़ाने यानी विकसित भारत बनाने के लिए इसका नशा मुक्त होना क्यों जरूरी है?
4: देखिए, आज अगर हम विश्व में देखें तो भारत में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। हमारे यहाँ 15 वर्ष से लेकर के 29 वर्ष तक की जो एक ब्रैकेट है, इसमें 37 करोड़ युवा हैं। ये युवा ही आज हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है, और यदि इस युवा शक्ति को हम अपने राष्ट्र के विकास में सही तरह से उपयोग में लाते हैं तो ये हमारे लिए एसेट बनेगा। लेकिन अगर यही युवा अपने आप को ड्रग्स वगैरह के एडिक्शन में, अल्कोहल के एडिक्शन में अगर एंगेज कर लेते हैं, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन हमारे राष्ट्र के विकास में होना चाहिए वो हो नहीं पाएगा। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी इस स्कीम पे बहुत जोर दे रहे हैं, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। जो भी विकसित देश आज विश्व में हैं, उन्होंने अपनी युवा शक्ति को अच्छी तरह से हार्नेस किया है, उनकी एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से यूज किया है, और यदि हम विकसित बनना चाहते हैं 2047 तक, तो हमें भी यही करना होगा।
3: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगला प्रश्न ये है सर कि मादक द्रव्यों का सेवन एक जटिल और निरंतर बदलने वाली चुनौती है। पूरे देश में ये समस्या कितनी बड़ी है और किस तरह की नई नई प्रवृत्तियां देखने को सामने आ रही हैं, इसका पता लगाने के लिए क्या कुछ प्रणालियां अपनाई जा रही हैं?
4: देखिए, ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर है एम्स दिल्ली में, तो उन्होंने एक नेशनल सर्वे किया, और उस सर्वे में उन्होंने अल्कोहल का, ड्रग्स का और जो इंजेक्टेबल सब्सटेंसेस होते हैं, इन सभी का उन्होंने सर्वे से पता लगाया। तो इसमें ये मालूम चला कि आज की तारीख में हमारे देश में लगभग 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि अल्कोहल का सेवन करते हैं, और इनमें से करीब 5% ऐसे हैं जो कि इस पे डिपेंडेंट हैं, जो इसके बिना कुछ कर नहीं पाते। और इसी तरह से जो गांजा है या उसके जो और पदार्थ हैं, तो उनकी संख्या भी 3 करोड़ से ज्यादा है, और जो ओपियोइड्स हम बोलते हैं उसकी संख्या करीब 2.25 करोड़ है। और जो चिंता का विषय इसके अंदर है वो ये है कि इसमें बच्चों की और एडोलेसेंट्स की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो ये सब इस सर्वे के थ्रू सामने आया है। इसके अलावा समय समय पर जो है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी होते रहते हैं, तो इन सब से भी हमें जानकारी मिलती है कि ये समस्या कितनी बड़ी है। और जो सीजर्स हो रहे हैं, जो प्रिवेंटिव मशीनरी जो हमारी जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है, तो ये सब भी जो है इनके सीजर्स किस तरह से हो रहे हैं, उससे भी हमें आइडिया लगता है कि ये समस्या कितनी बढ़ गई है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल के मन की बात के कार्यक्रमों सहित विभिन्न अवसरों पर विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा के महत्व पर बार बार बल दिया है। आप स्वस्थ एवं नशा मुक्त युवा आबादी और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में भारत की यात्रा के बीच संबंध को किस प्रकार देखते हैं?
4: देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारी जो युवा शक्ति है ये हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। आज की तारीख में हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इन युवाओं की प्रोडक्टिविटी का हमें पॉजिटिव यूज करना है। और आज की तारीख में जैसा हम देखते हैं कि 37 करोड़ युवा हैं, जो करीब 27% हैं हमारी जनसंख्या का, ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। धीरे धीरे हमारी जनसंख्या भी स्टेबलाइज हो रही है, और ये अनुमान लगाया जाता है कि 2036 तक जो है ये युवा जो एक ब्रैकेट है इसके अंदर करीब 22% लोग बचेंगे। तो इन्हें हमें पॉजिटिवली यूज़ करना है। अगर एक युवा नशाग्रस्त होता है तो उसका स्वास्थ्य खराब होता है, और अगर उसको उसका परिवार नशे के लिए पैसे नहीं दे पाता है या उसके स्वयं के पास वो नहीं कमा पाता है, तो वो छोटे मोटे अपराध भी करने लगता है। तो समाज को ये नुकसान होता है कि उसमें एक अपराधी उत्पन्न होता है। तो एक युवा के नशाग्रस्त होने पर युवा का नुकसान होता है, परिवार का नुकसान होता है, समाज का नुकसान होता है, यानी कि राष्ट्र का नुकसान होता है। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने युवाओं को इससे दूर रखें, क्योंकि तभी हम अपने विकसित भारत का अरमान पूरा कर पाएंगे, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जो एक उद्देश्य दिखाया है

0: रहा है?
1: देखिए, ये बहुत जरूरी है कि जो सरकार के अलग अलग विभाग हैं वो इसमें मिलकर काम करें और साथ में हम समाज को भी जोड़ें, परिवारों को भी जोड़ें। तो जहां तक सरकार की बात है, सरकार इसमें चार स्तंभों पे काम कर रही है, प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड रिहैबिलिटेशन। तो प्रिवेंशन का मतलब ये है कि जो भी ये पदार्थ हैं इनकी उपलब्धता को कम करना, उसको रोकना, जो ट्रैफिकिंग वगैरह हो रही है इस पे हमारा गृह मंत्रालय काम कर रहा है, उनकी एजेंसियां काम कर रही हैं। दूसरा स्तंभ जो मैंने बताया, प्रोटेक्शन, तो हमें ये अवेयरनेस फैलानी है कि इन चीज़ों के कितने दुष्प्रभाव हैं। इस काम में जो हमारा विभाग है, युवा कार्यक्रम विभाग जो है, वो इस दिशा में कार्य कर रहा है। और न केवल हम अवेयरनेस फैलाते हैं बल्कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, माई भारत पोर्टल है हमारा, उसमें हमारे वॉलंटियर्स हैं और हमारा जो NSS है, जो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में और विद्यालयों में है 11वें और 12वें में, उसके द्वारा जो युवाओं की एनर्जी है उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन में हम चैनलाइज करते हैं। बाकी के जो दो स्तंभ हैं, सपोर्ट एंड रिहैबिलिटेशन, इसमें जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट काम करती है कि अगर कोई नशे की लत में पड़ जाता है तो उसको कैसे उससे बाहर निकाला जाए और उसको कैसे सपोर्ट किया जाए। तो इस तरह से ये तीनों जो एंटिटीज हैं सरकार की, ये मिलकर इस दिशा में कार्य कर रही हैं।
0: नशा मुक्त भारत के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया जा रहा है, यानी कि इनको एक साथ लेकर चलने की बात की जा रही है। जमीनी स्तर पर विशेष रूप से युवाओं, परिवारों और स्थानीय समुदायों के लिए इस दृष्टिकोण का क्या अर्थ हम समझ सकते हैं?
1: देखिए, इसमें जो पूरी, अगर मैं इसको जंग कह सकूं, इसमें हमारे उनके परिवारों का, युवाओं के परिवारों का, सभी के परिवार का और समाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि सबसे पहली यूनिट परिवार है जिसको ये मालूम चलेगा कि कुछ अनयूजुअल हो रहा है, कुछ चीज नॉर्मल नहीं है। तो वही इसको आइडेंटिफाई करके और जो भी इसकी तरफ बढ़ रहा है उसको वहीं रोक सकते हैं। अगर वो ज्यादा आगे बढ़ गया है तो उसका डी एडिक्शन होता है, रिहैबिलिटेशन होता है, उसकी तरफ उसको ले जा सकते हैं। समाज का ये योगदान रहता है कि अगर ऐसा कुछ भी इस तरह के पदार्थों की बिक्री हो रही है तो उसके बारे में समाज में किसी न किसी को तो मालूम चल ही जाता है, तो वो इसकी जो संस्थाएं हैं, जो इसकी रोकथाम की व्यवस्था करती हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन दे। इसके अलावा अगर कम्युनिटी एकजुट होके ये कहती है कि हमारे यहाँ कोई नशा नहीं करेगा, इन सब चीजों से हम दूर रहेंगे, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बच्चे जो हैं वो बहुत चीजें, उनका जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं उसमें सीखते हैं, तो उस दृष्टि से इसमें जो हमारे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। बहुत अच्छे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे देश में काम कर रहे हैं और इन स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जब व्यक्ति जुड़ता है तो वो कई बार अपने पूरे परिवार के साथ जुड़ता है। तो इसमें भी अगर इस विषय की चर्चा होती है, इनके दुष्प्रभाव बताए जाते हैं, तो उसका भी एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से परिवार का, समाज का, जो ये समाज सेवी संस्थाएं हैं इनका, जो हमारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनका, हम सभी का इसमें योगदान है।
0: तो सामाजिक तौर पे हम देखें तो जागरूकता और चेतना लाना बहुत ही आवश्यक है, नितांत आवश्यक है इस दिशा में। अगला प्रश्न है, युवा कार्यक्रम विभाग ने माय भारत के माध्यम से विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान को युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलन के रूप में शुरू किया है। युवाओं को केवल लाभार्थी के रूप में देखने के बजाय स्वयं उन्हें अभियान के केंद्र में रखने के पीछे की क्या सोच है?
1: अगर हम किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे जिसको ये नशे की आदत पड़ी, तो कई बार हमें ये उत्तर मिलेगा कि ये आदत उसको क्यों पड़ी, कि वो किसी तनाव में था, उसके ऊपर कोई प्रेशर था, या जस्ट फॉर फन उसके आसपास के लोगों ने, उसके साथियों ने उससे कहा बस एक बार। ये बस एक बार जो है अनफॉर्चुनेटली बार बार बन जाता है। तो इसीलिए अगर युवा इसका लाभार्थी न होकर के खुद ही इसका संदेश वाहक होगा, तो जो ये बस एक बार की बात है, ये नशा करने के लिए नहीं कही जाएगी, ये बल्कि कोई समाज सेवा का कार्य करने के लिए कही जाएगी, किसी अच्छे काम के लिए कही जाएगी। इस दिशा से युवाओं का खुद का इसमें बहुत महत्व है, उनकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है।

कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आपका फिर से स्वागत है और आज हमारे अतिथि हैं युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार में सचिव श्री सुनील पालीवाल जी। तो सर, अगला प्रश्न आपसे ये है कि इन क्षेत्रों में विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों द्वारा कार्य किए जाने के मद्देनजर समन्वित राष्ट्रीय कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए उनकी संबंधित भूमिकाओं में किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित किया जाए?

0: इसके अलावा यदि कोई नशे में चला गया है, किसी को मालूम चला कि उसका दोस्त जो है वो नशे में चला गया है, तो उसको बहुत सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ये एक युवा, उसका जो मित्र है वो उसको अच्छे से दे सकता है। तो इसीलिए इस पूरी योजना का, इस पूरी कैंपेन का फोकस ये है कि युवा इसमें सहभागी बने, ना कि लाभार्थी।
1: युवा सहभागी बने और अपने मित्रों से, अपने परिवार से, अपने समाज से जब चाहे, जैसी चाहे आवश्यकता उन्हें पड़े मदद ले सकें। इस तरीके का एक ओपननेस होनी चाहिए, उस तरीके का एक इंड्यूसिव एनवायरनमेंट उसको मिलना चाहिए बच्चे को। तो इसी सोच के साथ हम लेते हैं यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के हमारे अतिथि हैं युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार में सचिव श्री सुनील पालीवाल जी, और आज हम बात कर रहे हैं, हमारे कार्यक्रम का विषय है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान दीर्घ अवधि तक युवाओं की सहभागिता बनाए रखने का प्रयास करता है। इस विस्तारित अभियान का उद्देश्य क्या है और ये एक बार की जागरूकता गतिविधियों से आगे बढ़कर निरंतर व्यवहारगत तथा सामुदायिक स्तर पर परिवर्तन लाने की दिशा में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा पाएगा?
1: जैसा कि आपने बताया कि ये कार्यक्रम जो है ये 100 सप्ताह का कार्यक्रम है। इसको 100 सप्ताह का रखने का भी एक साइंटिफिक रीजन है कि जो भी रिसर्च हुआ है उसके हिसाब से कहा जाता है कि अगर हम किसी चीज को 21 दिन तक करते हैं तो हम उसके लिए अक्लेमेटाइज होते हैं, वो हमारे लिए एक रूटीन में आता है। अगर उसको हम 66 दिन तक करते हैं तो ये हमारी जो है ऑटोमेटिक बनने लगती है ये हैबिट। अगर हम इसको 1 साल तक करते हैं तो ये हमारी लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट होता है, और अगर हम इसको 100 हफ्ते तक कर लेते हैं तो ये हमारी आइडेंटिटी में लॉक हो जाता है, ये हमारे अंदर इतना डीपली इनग्रेन हो जाता है कि फिर ये हटता नहीं। तो इसी दृष्टि से इस कार्यक्रम को 100 हफ्ते का रखा गया है। जैसे हमारा जो NSS प्रोग्राम होता है जो कि हम कॉलेजेस और 11th एंड 12th में चलाते हैं, उसमें भी उसकी ड्यूरेशन भी हम लोग 2 साल रखते हैं, तो 2 साल लगभग 100 हफ्ते हो गया। तो ये इसमें जिससे कि ये उनकी एक आदत बन जाए, ये उनके जहन में उतर जाए, जिससे कि वो आगे भी कभी इस विषय में ना सोचें कि हम कोई नशा करेंगे। और इसमें एक चीज और आ जाती है कि हम केवल एक चीज पर जोर नहीं दे रहे। हमने जैसे शुरुआत हमने की थी कि हम प्लेज लेंगे, हम सभी लोग संकल्प लेंगे नशे से दूर रहने का, उससे आगे बढ़कर हम लोगों ने पूरा ये 100 सप्ताह का कार्यक्रम बनाया है। तो इसमें हम परिवार को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम समाज को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम हेल्थ की बात करेंगे, फैमिली की बात करेंगे, लाइफ स्किल्स की बात करेंगे, हम जो है स्पिरिचुअल एंगेजमेंट की बात करेंगे, फिटनेस की बात करेंगे। तो ये सभी चीजों को मिलाकर के ये 100 सप्ताह का कार्यक्रम बनाया गया है।
0: तो एक तरीके से हम बात करें तो होलिस्टिक अप्रोच से आप इस चीज को केटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि नशा मुक्त जो अभियान है वो हर लेवल पर, हर स्तर पर समाज में कार्य कर सके।
1: जी,
0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग समुदाय आधारित तंत्र के रूप में नशा मुक्ति मित्र नेटवर्क विकसित कर रहा है। युवा कार्यक्रम विभाग, माय भारत, NSS और अपने युवा स्वयंसेवी नेटवर्क के माध्यम से जमीनी स्तर पर इस पहल को किस प्रकार पूरक सहयोग प्रदान करें कि इसे सुदृढ़ता प्रदान हो सके?
1: जैसा कि मैंने बताया था कि 3 विभाग इसमें मिलकर काम कर रहे हैं, तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ने एक कार्यक्रम लेके आए हैं नशा मुक्ति मित्र। तो ये नशा मुक्ति मित्र जो हैं वो वॉलंटियर्स हैं जो पहले ये समझेंगे कि किस किस तरह के नशे होते हैं और इनके क्या दुष्प्रभाव हैं और इसके बारे में जागरूकता फैलाएं, यदि कोई इससे प्रभावित हो चुका है तो उसको कैसे मदद की जाए, डी एडिक्शन सेंटर्स कहाँ पर है, काउंसलिंग सेंटर्स कहाँ पर है। माय भारत जो कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आज की तारीख में 3 करोड़ से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं। नेशनल सर्विस स्कीम जो NSS है उसमें आज हमारे पास करीब 40 लाख वॉलंटियर्स हैं। तो ये वॉलंटियर्स जो हैं ऑलरेडी कम्युनिटी सर्विस का काम कर रहे हैं और अपनी इच्छा से कर रहे हैं, तो इनको भी हम मोटिवेट कर रहे हैं कि जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का जो नशा मुक्ति मित्र है उसमें ये लोग एनरोल करें, और ये लोग कर भी रहे हैं। 18,000 से ज़्यादा हमारे वॉलंटियर्स उसमें रजिस्टर कर चुके हैं, और इसके अलावा हमारी पहुँच जो है वो कम से कम 30,000 इंस्टीट्यूशंस तक है। तो ये पूरे नेटवर्क को भी हम उनके सपोर्ट के लिए ला रहे हैं, पर इस पूरे में हमारा प्रयास ये है कि हम जो कार्य वो कर रहे हैं उसमें उनको सप्लीमेंट करें, ना कि उसको डुप्लीकेट करें।
0: तो इस तरह की सामाजिक चुनौती का समाधान जब हम देखते हैं तो अकेले सरकार का कार्यक्रम नहीं हो सकता, इसमें गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज संगठन, आध्यात्मिक संगठन, शैक्षणिक संस्थान, उद्योग जगत, खेल निकाय और अन्य सामुदायिक संगठन नशा मुक्त भारत आंदोलन में सार्थक भागीदार किस प्रकार बन सकते हैं?
1: आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें सभी को मिलकर कार्य करना है। तो हमने जैसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं 125 से ज्यादा स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस होते हैं, जैसे CII है, FICCI है, SOCHM है, ये भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। फिर जैसा कि जो मैंने बताया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इनके जो एसोसिएशंस हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के हैं, जैसे CIPU बोलते हैं, FC बोलते हैं, AIU बोलते हैं, ये सब भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये हम जो कोशिश कर रहे हैं होल ऑफ प्रॉब्लम अप्रोच, जो पूरी ये समस्या है इसको जड़ से लेकर के पत्ती तक इसको खत्म करना है, तो इन सभी लोगों को हमने अपनी यात्रा में शामिल किया है और हम सभी लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं।
0: तो जड़ से लेकर पत्ती तक इस समस्या का समूल जो विनाश है, हम चाहते हैं कि हमारे लिसनर सुन रहे हैं आज इस कार्यक्रम को, ये करें और इसमें भागीदार बने। लेकिन उससे पहले लेते हैं हम ही छोटा सा ब्रेक।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज हमारे साथ जुड़े हैं युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार में सचिव श्री सुनील पालीवाल जी और हमारे कार्यक्रम का विषय है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। युवाओं को मादक पदार्थों के दुरुपयोग से रोकने में माता पिता, शिक्षक, युवा नेताओं और सहपाठियों की क्या भूमिका हो सकती है, क्या रोकथाम को केवल कभी कभार चलाए जाने वाले जागरूकता अभियानों तक सीमित रखने के बजाय युवा विकास की दैनिक प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जा सकता है?
1: ये बात सही है और हमने भी, हमारी सोच भी यही है कि ये एक इवेंट नहीं है और न ही ये सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। ये पूरा जो एक समाज की जो सोच है उसमें बदलाव लाने की एक प्रक्रिया है, इसीलिए हर एक पहलू पे ध्यान दिया जा रहा है। और जो लोग समाज को प्रभावित करते हैं, प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं, ताकत रखते हैं, वो सभी इसमें इन्वॉल्व है। सबसे पहला उदाहरण तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का ही दूंगा, जिन्होंने ये उद्देश्य हमारे सामने रखा है कि यदि हमें विकसित भारत बनना है तो हमें नशा मुक्त होना होगा, तो वो खुद एक सबसे बड़े आइकॉन है हमारे देश में। इसके अलावा जो भी प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं, हम सभी को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, स्पोर्ट पर्सन हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, या जो एंटरटेनमेंट की दुनिया में अच्छा रसूख रखते हैं, उन सभी को हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। इसके अलावा जो हमारी खुद की प्रक्रिया है वो भी युवाओं में से जो उनके अच्छे आइकन्स हैं, यूथ आइकन्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करती है। चूँकि हम यूथ पार्लियामेंट करके कार्यक्रम चलाते हैं जो कि जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर होता है। इसके अलावा हम लोग का विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग होता है जो कि बहुत बड़ा इवेंट है, अगेन वो भी जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक आता है। और स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस 12 जनवरी को मद्देनजर रखते हुए 10, 11 और 12 को इसको भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाता है और 12 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी खुद इसमें शामिल होते हैं। और पिछले दो कार्यक्रमों में उनने कम से कम 6-7 घंटे पूरे दिन में जो है इसको दिए हैं। तो इससे भी इन सभी सफल लोगों का उदाहरण देकर हम मोटिवेट करते हैं कि अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली यूज करो, नेगेटिवली नहीं।
0: जी, ऊर्जा को जो है सकारात्मकता की तरफ बहाया जाए, ना कि नकारात्मकता की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा यही है आपसे कि युवा कार्य विभाग के पास स्वयं सेवा और सामुदायिक सहभागिता का एक विशिष्ट तंत्र है। ये सकारात्मक अवसर युवाओं में विपरीत परिस्थितियों से निपटने की क्षमता को सुदृढ़ करने तथा मादक पदार्थों के दुरुपयोग के स्थान पर रचनात्मक विकल्प उपलब्ध कराने में किस प्रकार से सहायक हो सकते हैं?
1: देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, जो युवा है वो क्या ढूंढता है जिंदगी में, वो एक पर्पस ढूंढता है, उसको एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग होनी चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी की खोज रहती है और वो चाहता है कि वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी उसको मिले जिसमें कि वो कंट्रीब्यूट कर सके। तो जो हमारे जो कार्यक्रम हैं, हम मेन वॉलंटियरिज्म पे हमारे कार्यक्रम जो हैं आधारित हैं। तो माय भारत जो है तो उसमें तो राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति हमारे से जुड़ सकता है और जैसा मैंने आपको बताया, हमें खुशी है कि 3 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं। फिर हमारा जो NSS स्कीम है उसमें 40 लाख से ज़्यादा बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं और इसके अलावा हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन स्काउट्स एंड गाइड्स का भी है। तो ये जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इन तीनों बातों का ध्यान रखते हैं, उनको एक पर्पस प्रोवाइड करते हैं, बिलोंगिंगनेस का फीलिंग देते हैं और कंट्रीब्यूशन करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो इस तरीके से जो उनकी एनर्जी है उसको हम पॉजिटिवली चैनलाइज करते हैं।
0: जी।

0: पॉजिटिवली चैनलाइज कर रहे हैं एनर्जी को युवाओं की और युवाओं को मदद कर रहे हैं उनकी लाइफ का पर्पस ढूंढने में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश प्रसारित करने के लिए संगीत, नारों, नुक्कड़ नाटकों और डिजिटल सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है। माय भारत युवाओं की रचनात्मकता और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किस प्रकार कर रहा है ताकि ये संदेश युवा वर्ग तक उनकी ही भाषा में पहुंचाना सरल हो सके।
1: जैसा कि आपने बताया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 30 अगस्त के मन की बात में ये उल्लेख किया था कि नशा मुक्त युवा हैशटैग जो है उस पर युवा जो है वो कोई स्लोगन भेज सकते हैं, कोई अपना नाटक नुक्कड़ नाटक टाइप कर सकते हैं या फिर कुछ निबंध भी लिख सकते हैं या स्लोगन बनाए, जो भी गाना बनाए, फोक सॉन्ग बनाए, इसका उन्होंने आह्वान किया था। तो उसी दिशा में हम लोगों ने हमारा जो माय भारत पोर्टल है उस पर 4 प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं जो कि 12 सितंबर से शुरू हुई। जो पहली जो प्रतियोगिता हुई है इसमें हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी स्लोगन्स और स्ट्रीट प्ले और निबंध और फोक सॉन्ग्स इसमें आए हैं और अभी इनका इवैल्यूएशन करेंगे और इनमें से अच्छे वालों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और इस चीज़ का उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर से 27 सितंबर को भी किया था कि ऑलरेडी जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने जो अर्ज किया था उसको युवाओं ने बहुत अच्छे से लिया है और नशा मुक्त युवा के हैशटैग पर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आ रही हैं और वे जोर शोर से इसमें भाग ले रहे हैं। तो बेसिकली इस सब का उद्देश्य जो है वो ये है कि युवा जो है केवल मैसेज रिसीव नहीं कर रहे हैं, वो स्वयं के पॉजिटिव मैसेजेस अलग अलग तरीकों से बना भी रहे हैं और प्रसारित भी कर रहे हैं।
0: तो जो चैनल है वार्तालाप का वो द्विगामी है, यानी कि आप मैसेज रिसीव भी कर रहे हैं, आप मैसेज भेज भी रहे हैं युवाओं की तरफ, संदेश दोनों तरफ से बरकरार है। तो ये हम अपने लिसनर्स से अपील करना चाहेंगे इसी माध्यम से कि यदि आपकी भी कोई कंटेंट है, कोई सामग्री है जो कि आपको लगता है कि इससे संबंधित है और आप उसे भेजना चाहते हैं तो आप हैशटैग नशा मुक्त युवा पर उसको भेज सकते हैं। तो इसी के साथ हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज के हमारे अतिथि हैं युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार में सचिव श्री सुनील पालीवाल जी। और हमारा आज का विषय है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। हाल की नशा मुक्त युवा गतिविधियों में स्वास्थ्य, जागरूकता और निवारक उपायों को एक साथ जोड़ा गया है। क्या आपको लगता है कि भविष्य में स्वास्थ्य, फिटनेस, जीवन कौशल, स्वयं सेवा और सामुदायिक सहभागिता से जुड़े एकीकृत दृष्टिकोण को इस अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हुए हम देखेंगे जल्द ही?
1: बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया और पहले हमारी चर्चा भी हुई कि ये जो हमने कार्यक्रम बनाया है ये 100 सप्ताह का कार्यक्रम है, तो इसको हमने 4 थीम्स में बांटा है, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, रिकवर, लीड। तो बिल्कुल ये सारे टॉपिक्स इसमें लिए जाएंगे। जैसे अभी पिछले हफ्ते जो हमने उसमें किया वो था माय हेल्थ माय प्राइड, फिट यूथ पे भी हम जाएंगे, एडिक्शन फ्री यूथ पे, लाइफ स्किल्स के बारे में हम बात करेंगे, जो हमारे देश की जो संस्कृति है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कई चीजों के विषय में हम इन 100 सप्ताह में बात करेंगे और उनको इन्वॉल्व करेंगे।
0: जी सर, सरकार नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत डिजिटल निगरानी और संस्थागत समन्वय को सुदृढ़ कर रही है। प्रौद्योगिकी और आंकड़े अभियान की पहुंच के मापन से आगे बढ़कर हम ये कैसे जान सकते हैं कि अभियान सिर्फ लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा है बल्कि इसका सच में कोई गहरा असर भी हो रहा है? इसके प्रभाव का आकलन किस प्रकार से किया जा सकता है?
1: और ये बिल्कुल सही है कि जब भी हम कुछ योजना चलाते हैं, कोई कैंपेन चलाते हैं, तो ये जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, आवश्यक भी है कि उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है, जो टारगेट हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हम कितना सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो इसके हमारे पास कई तरीके हैं। जैसा कि मैंने बताया, हमारे पास जो हमारा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री जो है उनके कई डी एडिक्शन सेंटर्स वगैरह हैं, काउंसलिंग सेंटर्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर कितने लोग सहायता के लिए पहुँच रहे हैं। तो जरूर जब हम ये कैंपेन चलाएंगे तो वो नंबर बढ़ेगा पहले, क्योंकि उनमें जागरूकता आएगी, फिर धीरे धीरे अगर ये कैंपेन प्रभावी होगी तो जो लोग ड्रग ले रहे हैं उनका नंबर भी कम होना चाहिए, तो उसमें हम वो परिवर्तन देखेंगे। दूसरा जो है, जैसा कि आप जानते हैं, जो अल्कोहल का जो ऑफटेक है उसको भी हम लोग देख सकते हैं कि उस पर किस तरह से चेंज आ रहा है। और इसी तरीके से जो सरकार का जो फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, तो जो पिछले आंकड़े मैंने आपको बताए थे कि अल्कोहल से कितने प्रभावित हैं, ड्रग्स से कितने प्रभावित हैं, तो ये जो है वो फैमिली हेल्थ सर्वे से आया था। तो उस तरह के सर्वे से भी हमें जानकारी मिलेगी कि हमारी जो एफर्ट्स हैं, जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, उनका धरातल पर कितना प्रभाव पड़ा है।
0: जी, धरातल पर प्रभाव क्या है ये जान रहे हैं, फीडबैक के माध्यम से इस सिस्टम को और अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी दिशा में हम चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं ये म्यूजिकल ब्रेक।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं पोस्टबॉक्स नंबर 111। आज के हमारे अतिथि हैं युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार में सचिव श्री सुनील पालीवाल जी, और आज का हमारा विषय है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। सर, आपसे अगला प्रश्न हमारा ये होगा कि सरकार ये कैसे सुनिश्चित कर सकती है कि नशा मुक्त युवा अभियान से उत्पन्न प्रगति 100 सप्ताह की अवधि के बाद भी बनी रहे और ये एक सतत युवा एवं सामुदायिक आंदोलन का रूप ले, यानी कि कॉन्टिन्यूटी में चलता रहे इवन आफ्टर द अभियान।
1: बिल्कुल सही है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये एक इवेंट नहीं है, सीरीज ऑफ इवेंट नहीं है, ये ऐसा प्रयास है जिसमें हम चाहते हैं कि पूरा मानस बदल जाए, पूरी सोच बदल जाए। और

0: मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि कोई भी आदत को एकदम डीपली इनग्रेन होने में, उसको हमारी आइडेंटिटी में समाहित होने में 100 सप्ताह का टाइम लगता है, लेकिन लोग बदलते जाएंगे, नए युवा इसमें जुड़ते जाएंगे, तो इस कारण से ये ज़रूरी है कि न केवल हम इसका आकलन करें बल्कि हम किसी न किसी रूप में इसको आगे चलाते रहें। तो जो हमारे जो वॉलंटियर कार्यक्रम माय भारत है और जो NSS स्कीम है, तो उसमें हम कई थीम्स पे काम करते हैं, तो उन थीम्स में हम इसको एक महत्वपूर्ण स्थान देंगे जिससे कि लगातार इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बनी रहे। और ये जो विभागों का जो कोऑर्डिनेशन शुरू हुआ है, इसको भी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म दे दिया गया है। माननीय गृह मंत्री जी के चेयरपर्सनशिप में एक कमिटी है NCOD, तो ये एक स्ट्रक्चर जो है ये आगे भी लगातार चलता रहेगा, काम करता रहेगा, विभाग आपस में समन्वय करते रहेंगे और हम ये इंश्योर करेंगे कि ये जो समस्या है ये हमारे राष्ट्र में न केवल हम इसको जड़ से उखाड़ फेंकें बल्कि ये वापस पनप न पाए।
1: अगर कोई परिवार या युवा अपने आसपास नशे की बिक्री देखता है या खुद मदद चाहता है, तो वो सरकार से कैसे संपर्क कर सकता है? क्या इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर या पोर्टल बनाया गया है?
0: सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री का एक डी एडिक्शन हेल्पलाइन नंबर है 1446। तो यदि कोई भी सहायता चाहता है तो वो इस नंबर को डायल करके प्राप्त कर सकता है।
1: इस अभियान को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में प्रशासनिक स्तर पर राज्यों या स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बिठाने में क्या कुछ चुनौतियां आपने देखी हैं, और मंत्रालय यदि उनका कोई समाधान कर रहा है तो उसके बारे में आप हमें अवगत कराएं।
0: जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इस प्रयास में हम सभी एकजुट हैं, और हम जानते हैं कि भारत जो है इस मामले में थोड़ा ज्योग्राफिकली एक डिसएडवांटेज पोजीशन में है, क्योंकि हमारे पश्चिम में जो है वो गोल्डन क्रेसेंट है, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, जहाँ की इसका प्रोडक्शन काफी होता है, और इसी तरह से हमारे पूरब में जो है वो गोल्डन ट्रायंगल है, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार, तो उसके बीच में हम पड़ते हैं। तो जो इस तरफ के जो राज्य हैं उनमें नेचुरली इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर या पंजाब, हिमाचल इस तरफ, फिर श्रीलंका की तरफ जैसे तमिलनाडु वगैरह है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये सारी राज्य सरकारें, सभी राज्य सरकारें और खासकर ये राज्य सरकारें इसमें पूरा सहयोग केंद्र के साथ कर रही हैं और हम सब इसमें एकजुट हैं। जैसा मैंने आपको NCOD बताया कि ये जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर माननीय गृह मंत्री जी के चेयरपर्सनशिप में है, तो इसी तरह से हर राज्य के चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की इस तरह की एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग करते हैं, तो उसमें जो सारे कोऑर्डिनेशन इश्यूज हैं वो एड्रेस कर लिए जाते हैं। तो इसमें सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं और हम जरूर इसमें सफल होंगे।
1: भारत के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा सर, और एक सामान्य नागरिक परिवार, शैक्षणिक संस्थान या सामुदायिक संगठन नशा मुक्त भारत के राष्ट्रीय संकल्प में योगदान देने के लिए क्या कर सकता है?
0: जैसा हमेशा होता है कि हमें लगता है कि हम अकेले हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम सभी साथ में हैं, और यदि प्रत्येक व्यक्ति खुद पे ध्यान देगा तो अपने आप जो हमारा गोल है वो हम अचीव कर लेंगे। मेरा हमारे राष्ट्र के युवाओं के लिए संदेश ये रहेगा कि जो ये जीवन है ये एक भगवान की गिफ्ट है, ये जीवन एक जिम्मेदारी भी है और एक जरिया भी, ये विरासत भी है और नजरिया भी, इसे व्यर्थ न जाने दें, इसे जिएं, स्वयं को जानें, इसकी कमान खुद संभालें और खुद को उपहार दें उस जीवन का जिसे आप जीना चाहते हैं, जिसके आप योग्य हैं। अगर इंग्लिश में बहुत शॉर्ट में कहूंगा, लीड योरसेल्फ टू द लाइफ यू डिजर्व। बेस्ट विशेस, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: श्री सुनील पालीवाल सर, आज आपने हमारे देश के करोड़ों युवाओं को जो संदेश दिया है और जिस तरह सरकार के प्रयासों व योजनाओं के बारे में आपने बताया है वो वाकई प्रेरणादायक है। युवाओं को खेल, कला और सकारात्मक कार्यों से जोड़कर ही हम नशे के इस जाल को तोड़ सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने और अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इस अवसर के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी।
1: इसी के साथ कार्यक्रम के संयोजक प्रमोद कुमार वत्स और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के ठीक 12 बजे का वक्त हो गया है। इस घंटे के कुछ प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री पूर्वाह्न करीब 11 बजे चेन्नई पहुंचे। हवाई अड्डे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी और मां दुर्गा से सभी के लिए सुख शांति समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है कि शक्ति साधना के महापर्व नवरात्र की सभी देशवासियों को कोटि कोटि शुभकामनाएं। कालासागर में सोमवार को हमले का शिकार हुए तुर्की के स्वामित्व वाले मालवाहक जहाज MV रोयाद ममादोव से बचाए गए 3 भारतीय नागरिक स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। बुखारेस्ट स्थित भारतीय दूतावास ने यह जानकारी दी। भारत ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आम नागरिकों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। भारत ने आशा व्यक्त की कि क्षेत्र में जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल होगी। समाचारों के अंत में, ठाणे जिले में मानव तस्करी और देह व्यापार के एक कथित गिरोह का भंडाफोड़ कर पुलिस ने 35 वर्षीय एक टीवी अभिनेत्री को जाया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। आरोप है कि यह गिरोह मनोरंजन जगत से जुड़ी महिलाओं को जबरन देह व्यापार में ठगेलता था। प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार का यह अंक यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

107.1 FM रेनबो पर। ओहो ये कर रही है। बारह बजकर सात मिनट का वक्त हो गया है और इसके साथ शुरुआत हो चुकी है म्यूजिक कैफे की। मैं हूं आप लोगों के साथ में शिल्पा, और ये सबसे पहले जो है वो बच्चन साहब को, अमिताभ सर को जो है वो हम ढेर सारी जो है वो बधाई देंगे, शुभकामनाएं जो है वो देंगे, और 84th बर्थडे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो FM रेनबो की तरफ से और जितने भी लिसनर्स इस वक्त सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी विशेज जो है वो भेजी है, तो हम सब की तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। यस, और इस घंटे जो है, बल्कि मैं सोच रही थी चूंकि जब भी आती हूं तो हम म्यूजिकल गेम जो है वो खेलते हैं, दो गानों को मिक्स करके आपको सुनाया जाता है और आपको दोनों गानों को पहचानना होता है, ठीक है। तो आज मैं सोच रही थी कि बच्चन साहब का बर्थडे है तो क्या हम उनके गानों को जो है वो लेकर करें, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मतलब अगर तीन गाने भी हम उनके मिक्स कर लें तो इतने हिट हैं कि वो कहीं से भी कुछ भी डिफिकल्ट जो है वो नहीं रहेगा। तो इस घंटे जो है उनके हम कुछ गाने डेफिनेटली सुनेंगे, लेकिन इस घंटे के उस पार जो रिक्वेस्ट आर होता है उसमें फुल आर म्यूज़िक जो है वो आप लोगों की पसंद का इनफैक्ट होगा, है ना। तो उसके लिए जो है वो ऑलरेडी कुछ रिक्वेस्ट तो आ ही गई है, तो आप भी जो है एक बजे के पास जो है वो भेजिएगा, वरना आपके मैसेजेस जो है वो पीछे चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पर म्यूज़िक की एक क्लिप जो है वो आने वाली है, जैसा मैंने मेंशन करा, और आपको बस पहचानना है कि ये कौन से दो गाने हैं।

बताइए कौन से दुकाने हैं। मतलब बिल्कुल गाना जो है वो शुरू हो चुका था, 8-6-5-7-6-6-1-0-7-1 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ये गाना तो काफ़ी स्पष्ट तरीके से जो है वो समझ आ रहा है दूसरे का स्ट्रगल जो है वो होता है। चलिए भेजिए, और फिलहाल लता जी और किशोर कुमार साहब की आवाज़ में मिस्टर नटवरलाल का गाना ऑलरेडी प्ले हो चुका है, इसे सुने और फिर लौट कर आए यहीं म्यूजिकली।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: म्यूजिकली और 107.1 एफएम रेनबो पर 12:15 का वक्त जो है वो हो गया है। म्यूजिक कैफे चल रहा है, यहाँ पर म्यूजिकल गेम जो है वो हम खेल रहे हैं। दो धुनों को मिलाया गया है, आपको उनको जो है वो पहचानना है। एक गाना तो हमेशा की तरह जो है वो गेस कर लिया गया है। स्ट्रगल जो है वो दूसरे का होता है। एक्चुअली मुझे ये कहना चाहिए कि एक ही गाना जो है वो पहचानिए, क्योंकि एक तो बाय डिफॉल्ट जो है वो आ जाता है। चलिए, बहुत सारे लोगों को धुन वापस से जो है वो सुननी है, तो यहाँ पर एक और मौका जो है वो मिलता है।

जिसमें मेहनत जो है वो ज़्यादा करनी पड़ रही है, मैंने उसका लेवल काफ़ी ऊपर जो है वो रखा था, और दूसरा वाला जो है वो मैंने बहुत कम रखा था। तो अब ये शिकायत कोई नहीं करेगा कि मैडम जो है वो दोनों का लेवल जो है वो बराबर नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके बीट्स जो है वो वैसे रहते हैं, इसके वजह से कभी कभी जो है वो समझ नहीं आता। तो चलिए अभी अगर आ चुका है दिमाग में कौन सा गाना है तो 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, फटाफट से भेज दें, क्योंकि इसके बाद जो है वो सही जवाब बता दिया जाएगा। और अभी के लिए एक सुंदर सा गाना प्ले हो चुका है किशोर कुमार साहब की आवाज़ में, अमर अकबर एंथनी फिल्म से। सुने और फिर लौट कर आए यहीं म्यूजिकली योर्स पर।

70s 80s के गानों में जो स्टोरी टेलिंग होती थी उस कमाल की, मतलब दृश्य जो है वो लिटरली सामने जो है वो दिखने लगते हैं जब ये धुने, ये गाने जो है वो कानों में पहुंचते हैं। 12:21 का वक्त हो गया है और म्यूज़िक कैफ़े चल रहा है, शिल्पा के संग आप बने हुए हैं और यहाँ पर म्यूज़िकल गेम खेला जा रहा है। बच्चन साहब के गाने जो है वो भी सुन रहे हैं और एक से दो पूरा उन्हीं के गाने जो है वो प्ले होंगे यहाँ पर। और इनफैक्ट आप लोगों की सबकी रिक्वेस्ट जो है वो होगी, इस घंटे जो है वो थोड़ा मिक्स है क्योंकि हम एक म्यूजिकल गेम खेल रहे हैं। जैसा आपको पता है दो गानों की धुनें जो है वो मिलाई गई हैं, आपको जो है वो पहचानना है और राइट आंसर दो लोगों ने पहचान लिया है। कौन से वो दो गाने हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो है वो अगली धुन आएगी आप लोगों के लिए। इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी बड़ी है तो आई गेस आप लोगों को शायद थोड़ी सी आसानी हो।

सुनता ये कौन से दो गाने मिले हुए हैं 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। वैसे जो दो गाने मैंने आपको पहले सुनाए थे उसमें पंकज मोहर जी ने और नितिन जी ने राइट आंसर जो है वो दिया है, वो दो गाने ऐसे जो है देखो पहचान में नहीं आए थे, अब शायद सोलो सोलो प्ले होंगे तो ये वाले गाने के लिए थोड़ी डिफिकल्टी जो है वो हुई थी। देखो इसके साथ चलो यही गाना जो है वो सुन लिया जाता है। तो चलिए अभी अगर पहचान लिया 8657661071 इस नंबर पर भेजें और फिलहाल के लिए ये आवाज़ को एंजॉय करें।

0: सेबी कडून इन्व्हेस्टर जागरूकता उपक्रम. अधिक माहितीसाठी सेबी इन्व्हेस्टर वेबसाइट वर विजिट करा किंवा सेबी सारथी ऍप डाउनलोड करा.
1: म्यूजिकली ऑर्स 107.1 एफएम रेनबो पर 12:31 मिनट का वक्त हो गया है. म्यूजिक कैफे चल रहा है, शिल्पा के साथ आप बने हुए हैं और म्यूजिकल गेम खेला जा रहा है. दो धुनों को मिलाया गया है, आपको उनको पहचानना है. चलिए, अभी कई सारे लोगों की फिर से रिक्वेस्ट आई है कि मैडम एक बार जो है वो और सुना दीजिए. तो लीजिए.

बताइए 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, बेटा का सॉन्ग नहीं है, ओके वो बीट्स काफ़ी सिमिलर है लेकिन बेटा का सॉन्ग जो है वो नहीं है, इनफैक्ट उस फिल्म का है जिसके ऑलमोस्ट सारे गाने सुपर डुपर हिट है और दो हीरोइन है। चलिए इतनी हिंट जो है वो मैं आपको देती हूँ, बहुत सुंदर गाने हैं इस फिल्म के, 90s की है। चलिए अभी ये वो गाना प्ले करा है जो दो गाने मिलाए थे ना, तो एक सफरनामा हमने सुना और दूसरा उदित जी और श्रेया घोषाल की आवाज।

आ रही है। 12:38 का वक्त हो गया है, म्यूजिक कैफे चल रहा है। नदीम श्रवण साहब की कॉम्पोजिशन आपने सुनी, समीर साहब के लिरिक्स थे और उदित जी और श्रेया घोषाल की आवाज़ थी। और यहाँ पर एक म्यूजिकल गेम भी चल रहा है जिसमें आपको गानों को पहचानना होता है, दो धुनों को मिलाया जाता है और फिर आपको सुनाया जाता है और फिर आपको कन्फ्यूज़ भी किया जाता है, क्योंकि कुछ ऐसी धुनें होती हैं जिनके जिनका म्यूज़िक बहुत सिमिलर साउंड करता है, लिटरली बहुत सिमिलर, और वहाँ पर आता है ट्विस्ट, वहाँ पर आता है मज़ा। बिकॉज हम अक्सर ऐसा होता है रॉन्ग वाला ही कैच करते हैं, राइट वाला आता ही नहीं है जबकि वो भी हिट होता है। तो चलो यहाँ पर पहले अगली धुन सुनाई जाएगी, फिर वो दो धुन वो मतलब दो गाने जो है वो सुनाए जाएंगे जो बहुत सारे लोग अथक प्रयास के बाद जो है वो नहीं पहचान पाए, और कन्फ्यूजन कहाँ हुआ उसके बारे में भी जो है वो बात होगी। तो चलिए अभी ये दो गाने, इनका म्यूज़िक कम है इसलिए गौर से सुनिएगा।

देखिए, एक तो एकदम क्लियरली जो है वो आज तो खास पहुंचाइए तो डेफिनेटली जो है वो समझ आ गया होगा. तो बताइए कौन से दो गाने जो है वो मिले हुए हैं, और 8658661071 की हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जो है वो भेज दीजिए. और अब आते हैं उन दो धुनों के ऊपर जो थोड़ी सी कठिन थी, जिसको सेपरेट सेपरेट सुनिए. देखिए, एक ये लगता है बेटा का गाना, कोयल से तेरी बोली, लेकिन ये वो नहीं है, मैं पूरा सुनाऊंगी. मीनवाइल ये जिसको समझ नहीं आया है, याद आया तुम इनका गाना, ये भी पूरा का पूरा जो है वो देखते ही देखते जो है वो सॉन्ग है. और ये वाला सुनिए, एक सिर्फ सही जवाब आया है मुझे सारिका जी का, उदित जी सादा जी की आवाज में है गाना, सुनिए, लौट कर आइए.

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: आकाशवाणी एफएम रेनबो
4: म्यूजिकली ऑर्स 107.1 एफएम रेनबो पर 12:46 का वक्त हो गया है और म्यूजिक कैफे चल रहा है। शिल्पा के संग आप बने हुए हैं और कुछ लोगों को जो है ये धुन वाला जो है वो मिक्सर फिर से सुनना है। हालांकि बहुत सारे लोगों के सही जवाब जो है वो आ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो एक प्रयास और करना चाहते हैं, तो लीजिए आप सबके लिए।

तो आ ही गए पहचान में, 8-6-5-7-6-6-1-0-7-1 ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, अगर समझ आ चुका है तो बताइए, मैसेज करिए, और नहीं तो इस गाने के उस पार जो है वो राइट आंसर बिल्कुल सुना दिया जाएगा, इनफैक्ट बता दिया जाएगा, से ज़्यादा अच्छा साउंड करता है नहीं। अभिजीत दा और अनुराधा जी की आवाज़ में तुम मेरी फिल्म का गाना, जिसकी धुन आपको सुनाई गई थी वो ताना नाना के साथ में है ना, तो उस पर कन्फ्यूजन हुआ था, अभी इसको प्योरली एकदम ऐसा सोलो जो है वो सुनिए और बने रहिए FM Rainbow म्यूजिकली योर्स पर।

राधा जी की आवाज में ये गाना है। इसके इनफैक्ट सारे गाने बहुत हिट हैं, ये थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि कम प्ले होता है, लेकिन बड़ा सुंदर है। नहीं, 12:52 हो चुके हैं, म्यूजिक कैफे चल रहा है। शिल्पा के संग बने हुए हैं प्रांजल पाटिल, पंकज मोहोड़ जी, सारिका जी, नितिन जी, दीपा पालकर जी और विजेंद्र घाटोल जी। इन सारे लोगों ने जो है वो राइट आंसर दिए हैं। कौन से दो गाने थे, एक तो बिल्कुल क्लियर जो है वो समझ आ रहा था, ओके ये वाला, ये तो इसको मैं आराम से जो है वो प्ले करूँगी तो सबको समझ आ गया था। स्ट्रगल जो था वो इस गाने का था, जो अगेन अभिजीत दा की आवाज़ में है और उन्हीं का एक एल्बम जो है वो आया था, और इसके सारे गाने इनफैक्ट हिट थे, लेकिन बड़ा सूदिंग सा म्यूज़िक जो वो छुप गया था ऐसे, थोड़ी हैवी बीट्स आती ना उनमें छुप जाते ऐसे म्यूज़िक, तो ऐसे ढूंढ के लाने पड़ते हैं आप लोगों के लिए। ओके चलिए अभी इस गाने को सुनिए और फिर कुछ नहीं करना है, बने रहिए, लौट कर आइए यहीं म्यूज़िकली यस पर, और ठीक 1 बजे होंगे समाचार मराठी में और 1:05 पर फिर से मुलाकात होगी हिट एंड हॉट के साथ।

107.1 FM रेनबो पर 1:05 का वक्त हो गया है। अभी आप सुन रहे थे समाचार मराठी में और अब यहाँ पर शुरुआत होती है हिट एंड हॉट की। ये वो घंटा होता है जहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट ली जाती है आरजे पास 6-6-1-0-7-1 जो नंबर आपके मोबाइल फ़ोन में सेव है, जिससे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट ऑलरेडी आ चुकी है।

तो एक बार और जो है अगर बहुत पहले मुझे मैसेज किया हो तो प्लीज़ वापस से जो है वो भेजें। और शो की शुरुआत जो है किशोर कुमार साहब की आवाज़ के साथ हो रही है। इस गाने को सुने और लौट कर आए यहीं म्यूजिकली योर्स में।

दादा जी और किशोर कुमार साहब की आवाज़ में गाना सिलसिला फिल्म से सुना आप सबने दीपा पालकर जी और पंकज मोहर जी की रिक्वेस्ट पर। 1:15 का वक्त हो गया है, हिट एंड हॉट चल रहा है, शिल्पा के संग आप बने हुए हैं। बच्चन साहब का बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा है, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट जो है वो आ चुकी है। देखते हैं कितने गाने जो है 2 बजे के पहले प्ले हो पाते। मेरी पूरी हर संभव कोशिश जो है वो रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा गाने जो है वो हम इस घंटे शामिल कर सके। और देखिए मैंने म्यूज़िक तो है लगा ही दिया है और 40 सेकंड में इसी में मैं बात अपनी पूरी करूँगी। बच्चन साहब की जब बात आती है तो जब हम कहते हैं ना कोई भी व्यक्ति कामयाब होता है तो उसकी सफलता तो एक होती है, लेकिन उसके पीछे उसकी बहुत बड़ी लंबी जर्नी होती है और वो एक्चुअली लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कामयाबी तो एक है लेकिन वो कामयाब कैसे हुए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम सब जानते हैं कि बच्चन साहब अपने टाइम को लेकर, पंचुअलिटी को लेकर कितने ज़्यादा पर्टिकुलर है और आज भी मतलब क्या कहें यार, कमाल। मतलब इस कामयाबी के बाद इस एज में अगर समय की कीमत मुझे लगता है सीखनी है।

0: तो वो इनसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता।
1: तो ना दे मुझे हरी हरी चूड़ियां।
0: विजेंद्र गाटोर जी की रिक्वेस्ट पर हुआ है ये सॉन्ग प्ले।

0: मलाइका जी और मोहम्मद अजीज की आवाज में गाना खुदा गवाह इस फिल्म से सुना। रशिक बोरकर की रिक्वेस्ट पर इनफैक्ट ये गाना एक और लिसनर हमारे सुनना चाहते थे, लेकिन आपका नाम बहुत पीछे आई गेस चला गया है, इसलिए मुझसे मिस हो रहा है। प्लीज़ मुझे वापस से जो है वो पिंग करें। और हिडन हॉट अभी चल रहा है, शिल्पा के संग जो है वो बने हुए हैं। बच्चन साहब की बात हम कर रहे थे टाइमिंग को लेकर, और टाइम के साथ एक और चीज़ मुझे लगती है कि एनर्जी। आज के समय में अक्सर यंगस्टर को हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा या बहुत जल्दी वो एनर्जी लेस हो जाते हैं, या कोई भी अगर चीज़ करना है तो वो एंथो जो है उनमें मतलब मिसिंग तो लगता ही है। तो वो अगर सीखना है तो वो हम अपने साहब से बहुत ही कमाल तरीके से जो है वो लर्न कर सकते हैं। जब हम उनको फिल्मों में देखते हैं वो एक है, लेकिन जो रियलिटी शोज़ में जिस तरह से वो होस्ट करते हैं, जिस तरह से इस उम्र में 84 बर्थडे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसमें उनकी एनर्जी का तोड़ नहीं है, तो सोचिए कितनी ऊर्जा से वो भरपूर हैं। तो ये आई गेस हम सबको, किसी भी उम्र के यंगस्टर के अलावा अगर किसी भी उम्र के हैं आप, तो मुझे लगता है ये सीखने वाली चीज़ है, क्योंकि इतनी सारी टेंशन है, इतना सब कुछ जो है वो जीवन में चल रहा है, उसमें अगर एनर्जी नहीं बनाई तो जीने का मज़ा भी जो है वो चला जाता है। जो काम हम कर रहे होते हैं उसका मज़ा जो है वो नहीं होता है, और पता नहीं बड़ी बोरिंग सी जो है वो लाइफ लगने लगती है। तो इसीलिए तो बहुत ज़रूरी है, मतलब अगर काम हो, रिश्ते हो, कोई भी चीज़ हो, एनर्जी नहीं है तो मतलब कुछ नहीं है। तो ये एक और चीज़ आई पर्सनली फील कि बच्चन साहब से जो है वो लर्न करने वाली। इसके अलावा तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी जिन्हें एक घंटे के शो में समेटना जेन्युइनली बहुत मुश्किल है। चलिए अभी यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ठीक 1:30 पर राष्ट्रीय मराठी समाचार जो है वो आप सुन सकेंगे, जो चलेंगे 1:40 तक, और उसके बाद फिर हम इसकी हिडन हॉट की गाड़ी जो है वो आगे बढ़ाएंगे।
1: कभी खट्टी मीठी तकरार,
2: जब तुम चाहो पास आ दे हो।
1: कभी बे इंतहा प्यार, कभी चुलबुली सी शरारत,
3: तो कभी मासूमियत बेशुमार।
1: ये है अनोखे रंगों वाला
3: FM रेनबो 107.1 MHz पर,
1: दिल से
3: दिल तक।

म्यूजिकली योर्स। 1:40 का वक्त हो गया है, राष्ट्रीय मराठी समाचार जो है वो सुन रहे थे आप। और अब हिट एंड हॉट की गाड़ी फिर से यहाँ पर आगे बढ़ने वाली है और देखते हैं, रिक्वेस्ट तो बहुत सारे लोगों की आ चुकी है। अब 20 मिनट का वक्त है और 4 गाने आई गेस आएंगे। तो अभी जो है राकेश माथुर जी की फरमाइश पर हो चुका है ये सॉन्ग प्ले, सुने और लौट कर आए यही म्यूजिकली योर्स पर।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: म्यूजिकली ऑर्स 107.1 एफएम रेनबो पर 1:50 का वक्त हो गया है, हिट एंड हॉट चल रहा है, बच्चन साहब के सॉन्ग्स एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी फरमाइश जो है वो सब की आई है। और उसके पहले जो गाना आप लोगों ने सुना दीदी प्यार दे शराबी फिल्म से, और सारिका जी की रिक्वेस्ट थी ये, और लालगिरी गोस्वामी जी, हेमलता जी, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी और सारिका जी जो है वो फीमेल वर्जन इसका सुनना चाहती थी, और उसमें बड़ा मतलब मज़ा आता है इसको विजुअली जब देखते हैं। जया जी जो है वो सामने गाना गा रही हैं और अमित साहब जो है वो सामने बैठे और उनके एक्सप्रेशन उफ कमाल। मतलब मैंने कहा ना कि उस वक्त का म्यूज़िक ऐसा होता था कि जहाँ पर आपने विजुअली अगर वो गाने देखे हैं तो वो पूरा दृश्य, पूरे के पूरे गाने जो है वो एज इट इज़ जैसे शूट किए हैं वैसे के वैसे हमारे दिमाग में जो है वो आ जाते, ये कमाल था उस समय के गानों का। चलिए अभी आई थिंक एक गाना जिसकी फरमाइश बहुत सारे लोगों ने इन्फेक्ट की है, तो सबसे पहले तो मैं सबके नाम जो है वो बता दूं किन किन लोगों ने मैसेजेस करे हैं लगातार निरंतर। विजेंद्र घाटोल जी, राकेश माथुर जी, विनायक कुमार जी, प्रशिक बोरकर, दिग्दर्शन जी, कविता जी, सारिका जी, डी कैस्ट्रो, आकांक्षा, राजकुमार जी, नितिन जी, दीपा पालकर जी, संदीप कुमार, हितेंद्र दास, पंकज मोहोड़, मुकेश कश्यप, नौरत सुवसिया, यश शिंदे जी, अजय साखरे जी, लालगिरी गोस्वामी, प्रमोद जी, हीरामणि वर्मा, सुरेश वैष्णव, गोपे झारखंड से, यशवंत आडमुटे, अंजू जी अंधेरी से, फिरोज सिगनपुरिया, संजय दर्शन जी, प्रांजल पाटिल, इब्राहिम, मुकेश वालिया, कल्पना जी, वैष्णवी वारे, श्रेया राउत, मिलेश गजानन राउत और

प्रदीप जी, अपर्णा जी और यस, इन सारे लोगों के सबके मैसेजेस जो है वो आए हैं. और एक आखिरी गाना, क्योंकि मैंने इतनी लंबी यू नो बातचीत की, तो आई थिंक अब एक गाना जो है वो आएगा अलीशा जी की आवाज़ में. शंकर महादेवन और जावेद अली, समझ गए होंगे कौन से गाने की जो है वो बात हो रही है. और इसी के साथ टाटा बाय बाय जो है कहना पड़ेगा आप सभी को. और मेरी आपकी मुलाकात जो है वो बहुत जल्द होगी यहीं यस FM रेनबो पर. अगले शो में कब होगी, इसे सरप्राइज करके जो है वो हाजिर जो है वो हो जाते हैं. और साथ ही आप सभी श्रोताओं को नवरात्रि की ढेर ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं. और जब भी कोई त्यौहार आता है तो बहुत सारी ऊर्जा अपने आप में हमारे अंदर आ जाती है, लेकिन त्यौहारों का मतलब यही होता है कि ये ऊर्जा को कंटिन्यू रखा जाए. जी हाँ, तो प्लीज़ कोशिश करिए कि जो उत्साह, जो एनर्जी अभी रहे वो बरकरार जो है वो रहे. और ठीक 2 बजे मिड डे न्यूज़ आप सभी सुन सकेंगे, और उसके बाद मराठी गानों का प्रोग्राम जो है वो शुरू होगा यहाँ पर. और जाते जाते ये गाना आप सबके लिए.

0: Arrival of the festive season in Kolkata with the beginning of Devi Pakho. Chief Minister Shubhendu Adhikari formally inaugurated the Durga Puja festivities through the program featuring dance, music, a drone show and fireworks. The highlight was a record-setting gathering of 3,000 dhakis, earning the event a place in the Guinness World Records. A stunning drone display illuminated the sky with an image of goddess Durga as Mahishasuramurthini. Musical performances by Shantanu Maitra, Shan and the Dohar band added to the celebrations. Tundipan Dashutto, Akashbani News, Kolkata.
1: The India Meteorological Department IMD has forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Kerala, Mahe, Lakshadweep, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Tuesday. Similar weather conditions are expected over Andhra Pradesh, Jharkhand, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Odisha and West Rajasthan today. IMD has also said that hot and humid weather conditions is likely at isolated places over coastal Karnataka, Konkan and Goa for the day. In men's cricket, India will face West Indies in the third T20 International at Holkar Stadium in Indore today. The match will begin at 7 p.m. Indian Standard Time. The five-match series is currently level at 1-1. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Punnamalli Vadapalani stretch of Phase 2 of Chennai Metro Rail Project. Prime Minister to launch development projects worth over 13,000 crore rupees in Chennai this afternoon. India condemns repeated attacks on Riyadh Airport, expresses concern over loss of lives and damage to property. Supreme Court directs authorities to prevent illegal detention of peaceful gatherers, ensure free movement of people and uninterrupted internet services. Nepal issues evacuation warnings along Buri Gandaki River after rising water sweep away houses in Gorkha district. And in men's cricket, India to take on West Indies in the third T20 International in Indore this evening. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के पूनमल्ली वडापलानी खंड का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत ने रियाद हवाई अड्डे पर हमलों की निंदा की और जानमाल तथा संपत्ति के नुकसान पर चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए लोगों की अवैध हिरासत रोकने, सामान्य आवाजाही और निर्बाध इंटरनेट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। नेपाल ने गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी बढ़ने से कई घरों के बह जाने को देखते हुए लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंचे। वे आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों, अन्ना द्रमुक महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी सहित अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने चेन्नई में रोड शो किया और पोरूर पूनमल्ली मेट्रो रेल सेवा को रवाना किया। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो की यात्रा की। लगभग 4.25 किलोमीटर लंबे पुनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में बिना ड्राइवर के डबल डेकर मेट्रो संचालन के लिए उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली लगाई गई है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें पलानी, वेल्लोर छावनी, अम्बास समुद्रम, परमाकुडी और नमक्कल में स्थित 5 अमृत स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया गया है। श्री मोदी परिसर में बना सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य समुद्री अवसंरचना को मजबूत करना, माल ढुलाई क्षमता का विस्तार करना और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करना है। प्रधानमंत्री चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

0: की मनाली रिफाइनरी में ल्यूब ऑयल बेस स्टॉक्स परियोजना की शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कामराजर बंदरगाह पर अतिरिक्त कोयला बर्थ परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वे जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लेने और यातायात को सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार बनाए रखने और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के कथित उल्लंघन के लिए अवमानना कार्यवाही करने वाली याचिका पर न्यायालय ने कहा कि वो सभी पक्षों की बात सुनेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि किसी को कोई असुविधा ना हो। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को रिहा कर दिया गया है। इन तीनों को कल एहतियातन हिरासत में लिया गया था। नई दिल्ली में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज उनकी रिहाई का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार तीनों ने एक वर्ष तक शांति बनाए रखने का भरोसा दिलाया है। उन्हें 50,000 रुपये की जमानत पर रिहा किया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को उनकी दादी के निधन की सूचना कल ही दे दी गई थी। पुलिस के अनुसार दिपके को मानवीय आधार पर उनके पैतृक शहर जाने के लिए हर संभव सहायता की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये सहायता लेने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि सभी रेलगाड़ियां निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
2: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को यह सुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अनवरत अटूट वचनबद्धता से प्रेरित रही है। सेवा और सुशासन को केंद्र में रखकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण का ये प्रयास लोगों के जीवन को परिवर्तित कर रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में चर्चा पद्म पुरस्कारों की, जिसकी चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए व्यापक बदलाव किए गए।
3: 2014 के बाद पद्म पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया में व्यापक बदलाव किया गया। देश के इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाया गया है। अब देश का कोई भी नागरिक किसी भी योग्य व्यक्ति को नामांकित कर सकता है। अब इसमें लोगों के पास खुद को भी नामांकित करने के अवसर हैं। सभी नामांकन पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। इन व्यापक सुधारों ने पद्म पुरस्कार को एक सीमित दायरे से निकालकर जन पुरस्कार के रूप में बदल दिया और दूर दराज, ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के जमीनी स्तर पर असाधारण काम करने वाले गुमनाम नायकों को सम्मानित करने का नया मानक स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के एक एपिसोड में पद्म पुरस्कारों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब ये पीपुल्स पद्म बन चुका है।
4: पद्म सम्मान का सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका है, अब ये पीपल्स पद्म बन चुका है। पद्म सम्मान देने की व्यवस्था में कई बदलाव भी हुए, अब इसमें लोगों के पास खुद को भी नॉमिनेट करने का मौका रहता है।
3: पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उत्तर प्रदेश की मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया को आसान किए जाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की।
5: भारत सरकार ने निसंदेह 12 वर्षों से ये प्रयास किया है कि भारत की मिट्टी के जो सच्चे सेवक है उनको सम्मान मिले और उनके बारे में बताना, मुझे लगता है कि इसकी जितनी भी सराहना करें वो कम है।
3: उत्तर प्रदेश के वाराणसी की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका और वर्ष

0: 2026 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित मंगला कपूर ने भी पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया को आसान किए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और कहा कि अब एक आम आदमी के मन में यह विश्वास मजबूत हुआ है कि वह किसी भी क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य कर रहा है तो उसे भी पद्म पुरस्कार मिल सकता है। प्रेमचंद्र गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
1: भारत ने कहा है कि नई दिल्ली में हाल की घटनाओं के संबंध में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की टिप्पणियां अनुचित और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य हस्तक्षेप हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां संविधान शांतिपूर्ण प्रयोजन से एकजुट होने की अनुमति देता है, लेकिन अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत में भी इन अधिकारों का प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। भारत ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आम नागरिकों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। भारत ने सऊदी अरब की संप्रभुता की रक्षा के लिए वहां की जनता और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की। भारत ने आशा व्यक्त की है कि क्षेत्र में जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल होगी। सऊदी अरब ने एक बयान में बताया कि हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 लोग घायल हैं। मृतकों में 4 सऊदी नागरिक और 8 विदेशी नागरिक हैं। विदेशी मृतकों में बांग्लादेश के 2 और अमरीका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, फिलिस्तीन तथा सूडान का एक एक नागरिक है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि दम्माम स्थित किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी हवाई हमला हुआ। एक रिपोर्ट।
2: शनिवार को रियाद एयरपोर्ट पर हूतियों का हमला इस हफ्ते का तीसरा हमला था। यह पिछले करीब 10 साल में सऊदी अरब पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक था। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के अलर्ट सिस्टम से कोई खतरे का अलर्ट जारी नहीं हुआ था। शनिवार को रियाद आने जाने वाली करीब 260 फ्लाइट्स रद्द होने की खबर है। इस हफ्ते हुए पहले के हमलों में भी लोगों की जान गई थी और एयरपोर्ट पर खड़े सऊदी अरब के एक कमर्शियल विमान को नुकसान पहुंचा था। सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने दम्मम एयरपोर्ट और अल खर्ज को भी निशाना बनाने की कोशिशों की जानकारी दी है। गठबंधन ने सऊदी क्षेत्र पर हुए इन हमलों का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: अमरीका यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब की सैन्य कार्रवाई में शामिल होने पर विचार कर रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने के इच्छुक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शांति स्थापित करने के अवसरों को बार बार गंवाया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी अचानक बढ़ने के बाद तटवर्ती बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। आज तड़के जलस्तर बढ़ने से कई मकान बह गए। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जलस्तर में अचानक वृद्धि का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस बीच नेपाल में बाढ़ को देखते हुए बिहार के सीमावर्ती जिले पश्चिम चंपारण में सतर्कता बढ़ा दी गई है। हालांकि बिहार पर इस बाढ़ का असर होने की संभावना बहुत कम है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के जिलाधिकारी तरणजोत सिंह ने कहा कि जिले में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका नहीं है।
3: लोगों ने अलर्ट किया है, लेकिन पानी कोई बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, देवघाट पर भी मॉनिटर कर रहे हैं। एक देवघाट से भी पीछे काली खोला करके जगह है, वहां पर पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ के लगभग 50 सेंटीमीटर बढ़ के अब फॉल करना शुरू कर गया है।
1: गुजरात में गांधीनगर, ओखा और थारा नगर निगम चुनाव तथा खिरालू, छोटा उदयपुर और बायद नगर निगम उपचुनाव, देवभूमि, द्वारका जिला पंचायत, पड़धारी, सतलासना और हरिज तालुका पंचायत के उपचुनावों के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी है। गांधीनगर नगर निगम के 11 वार्ड में अब तक औसतन 31.9% मतदान दर्ज किया गया है। शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है, जिसे लोग उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कल कोलकाता में ईडन गार्डन्स में महालया के अवसर पर आयोजित भव्य उमा आगमोनी कार्यक्रम के साथ देवी दुर्गा के आगमन का स्वागत किया।

0: कोलकाता में देवी पक्ष की शुरुआत के साथ ही दुर्गा पूजा की रौनक बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को ईडन गार्डन्स में उमा आगमन कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस कार्यक्रम के साथ दुर्गा पूजा उत्सव की औपचारिक शुरुआत की। 3000 ढाकियों ने एक साथ पारंपरिक ढोल बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ड्रोन शो में आसमान पर देवी दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी स्वरूप की छवि दिखाई गई। उत्सव की रौनक रोड पर भी देखने को मिली, जहां विभिन्न पंडालों में पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कामना की कि मां दुर्गा का आशीर्वाद सभी को शक्ति, साहस और सद्बुद्धि प्रदान करे। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि देवी मां का आशीर्वाद देशवासियों में धैर्य और आत्मविश्वास की भावना को प्रेरित करेगा। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की इस श्रृंखला में दोनों टीम एक एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के पूनमल्ली वडापलानी खंड का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत ने रियाद हवाई अड्डे पर हमलों की निंदा की और जानमाल तथा संपत्ति के नुकसान पर चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए लोगों की अवैध हिरासत रोकने, सामान्य आवाजाही और निर्बाध इंटरनेट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 107.1 MHz पर यह है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर सुन सकते हैं, या आप अपने मोबाइल पर न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर यह कार्यक्रम इस वक्त सुन सकते हैं। और यदि आपने ये ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे कार्यक्रमों का लुत्फ उठाइए। शाम के 5:02 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लव यू जिंदगी। सभी श्रोताओं को माया का प्यार भरा नमस्कार। साथ ही साथ आज के नवरात्रि उत्सव की जो शुरुआत है, ये जो पावन पर्व है, इसकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।

चलिए दोस्तों, नवरात्रि भी आ गई, फिर दशहरा आएगा, फिर दीपावली भी आएगी, और इस तरह से हमारे जो उत्सवों की पर्व उत्सवों का जो पर्व है उस सभी की शुरुआत हो जाएगी। कैसा है ना ये जो एक माहौल बनता है ना उत्सवों का, इसे न जाने कहाँ से एक एनर्जी सी आ जाती है। वैसे तो साल भर हम इतना थक जाते हैं, रोज़मर्रा की आपाधापी, वही टेंशन्स, ऑफिस वाला टेंशन, घर वाला टेंशन, फ्रेंड्स में अनबन होती है तो टेंशन लेकिन ये जो उत्सव होते हैं, ये जो महापर्व होते हैं, ये हमारे जीवन में एक अलग ही पॉजिटिविटी, एक अलग ही एनर्जी लेकर आते हैं। और भाई इसीलिए इसका एक भी पल हम में से कोई भी मिस ही नहीं करना चाहता। आप करते हैं मिस? अगर मिस कर रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिए।

वैसे गाना बजाना और फिर इसमें नृत्य संगीत, ये जो सब एक अलग ही जो वाइब क्रिएट होती है ना ये हमारे मन मस्तिष्क पर बहुत ही सुंदर प्रभाव डालती है। हाँ, ऐसा शास्त्र कहता है, साइंस कहता है। वैसे तो अगर भावनिक दृष्टिकोण से देखें तो जो एक आनंद मनाने वाली, खुशियाँ मनाने वाली, जोश खरोश वाली जो एक वाइब होती है वो तो होती है, बट उसकी वजह से होता ये है कि आपके मस्तिष्क से ऐसा स्त्रव या फिर ऐसा पदार्थ, ऐसा रसायन प्रवाहित होता है जो आपके हर

राशि में एक नई उमंग, नया जोश, नया खरोश पैदा कर देती है और इसकी वजह से आपको बहुत उत्साहमय लगता है, आपको एकदम पॉजिटिव लगता है, आपको ऐसे लगता है कि हम बहुत खुश हैं और इसी में खुश रहें। खासकर जो यंगस्टर्स होते हैं, जो युवा होते हैं, युवा पीढ़ी होती हैं, उनको तो ये भावना, इस भावना का

वो देखने का आनंद भी कुछ और ही होता है। और खैर हमारे आसपास के वातावरण में वो वाइब्स तो होती ही है, वो भी आपके मन मस्तिष्क को असर करती हैं। तो अगर आप इसमें सहभागी हो ना हो, दोनों ही तरह से आपको इसमें सुख शांति उत्साह तो ज़रूर मिलता है।

बहुत सी बार ऐसे होता है दोस्तों कि ये जो नाच गाने वाली मस्ती होती है ना, इसको देखने में जो मज़ा आता है वो उसमें प्रत्यक्ष सहभागी होने में जितना आता है उतना नहीं आता। पर ऐसे लगता है कि नहीं भाई, हमें कहाँ नाचना आता है, हमें तो बस देखने में ही आनंद है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा हाथ पैर चला लेने से, मतलब

हंसते समय वो जो एक आनंद होता है, फिर उसकी वजह से जो थोड़ी सी वर्जिश भी हो जाती है अपने शरीर की, उन सब की वजह से भी एक अलग ही लेवल का मज़ा आता है। मतलब कभी आपको ऐसे लगे कि बहुत सारा नृत्य का और जश्न चल रहा है, बहुत अच्छा म्यूज़िक बज रहा है, लोग नाच रहे हैं, भाई लोग क्या कहेंगे, मैं तो ठीक से नहीं नाच पाता हूँ, बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि थोड़ा तो थिरक लेना ही चाहिए, इतना सुंदर म्यूज़िक बज रहा है, तो ज़रूर अपना ये जो शौक़ है या फिर अपने अंदर की वो जो हुक है, उसे ज़रूर पूरा कीजिए, देखिए आपको कितना आनंद मिलता है।

शाम के 5:35 हो रहे हैं और लव यू जिंदगी कार्यक्रम आप माया के साथ सुन रहे हैं। आज बातें हो रही है उत्सव की, क्योंकि नवरात्रि है, और गाने बजाने की और उससे जुड़ी हमारी भावनाओं के एहसासों की भी बात हो रही है। दोस्तों, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, मतलब इन पर्वों को जो हम मनाते हैं, वैसे तो 365 दिन भारतवर्ष में कहीं ना कहीं कोई ना कोई उत्सव तो ज़रूर मनता है। ये हमारी विविधता है और ये खूबसूरती है हमारे देश की। और जब ऐसे पर्वों की बात चलती है तो बिल्कुल पुरातन काल से ये ज़रूर देखा गया है कि इंसान अपनी रोज़ की आपाधापी वाली ज़िंदगी में कैसे खुश रहे, क्योंकि जनाब खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप खुश नहीं रहेंगे तो ज़िंदगी को गले कैसे लगाएंगे। इसीलिए खुश रहने के लिए ये जो सारे पर्व हैं, ये जो सारे उत्सव हैं, ये हमारे लिए हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आध्यात्मिक नहीं तो घर के ही किसी सदस्य का कोई, किसी का बर्थडे है, किसी को प्रमोशन मिला, किसी कोई बच्चा घर का अच्छे गुणों से उत्तीर्ण हुआ, ये जो छोटी छोटी खुशियां हैं, इसका पर्व, इसका उत्साह, इसका उत्सव मनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। वैसे तो ज़िंदगी बहुत कम है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे पल हमें इतनी सारी खुशियाँ दे जाती हैं कि ज़िंदगी के फिर बाकी के जो गम होते हैं, जो वेदनाएं होती हैं, वो हमें बहुत फीकी फीकी लगने लगती हैं इन सारे पलों के सामने। इसीलिए तो इंसान ऐसे पलों को हमेशा से ही अपने साथ, अपने आंचल में जोड़ कर रखने की कोशिश करता है और इसी के सहारे ज़िंदा रहकर ज़िंदगी के साथ दो हाथ करना वो खूब जानता है।

दोस्तों, उत्सवों में या फिर किसी शुभ घड़ी में नृत्य और संगीत, इसका जो चलन है सदियों पुराना है।

हमारे भारतवर्ष में जितने भी उत्सव होते हैं, पर्व होते हैं, शुभ घड़ी होती है, ऐसे में बहुत सुंदर सुंदर पारंपरिक लोकगीत गाए जाते हैं और उसके साथ साथ उसी तरह का संगीत भी बजता है। कहीं पर ढोल होता है, कहीं पे चौघड़े होते हैं, ऐसे बहुत सारे वाद्य प्रकार हैं जिनसे निकलने वाला जो स्वर है वो लोगों को एकदम अनुनाइत कर देता है और अपने आप में झूमने में मजबूर कर देता है। लोग ऐसे पर्वों का इंतज़ार किया करते हैं ताकि ऐसे पर्व उन्हें सारे दुखों को भूलकर झूमने पर, थोड़ा सा सुख, थोड़ा सा आनंद अपने आप में समाहित करने पर मजबूर करें। वैसे सदियों से चलती आ रही ये जो रीति है, ये इंसान के जीवन को संवारने के लिए ही तो बनाई है हमारे पूर्वजों ने, और इसका ही संवहन हम आज तक करते आ रहे हैं। और ये जो पीढ़ी जात हमारी संपत्ति है, ये जो खुशियाँ मनाने का एक ये जो रिवाज है, ये इसी तरह से कायम रहेगा, क्योंकि इससे मिलने वाली जो खुशी है वो कहीं और नहीं मिलेगी, उसका उसका जो स्वाद है वो कहीं और नहीं मिलेगा।

विशाल मिश्रा और साथियों का गाया आरआरआर फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। और मुझे आशा है कि आज की जो प्लेलिस्ट है आपको बहुत जोश और खरोश के साथ झूमने पर ज़रूर इसने मजबूर किया होगा। और रात को जो आज से गरबा शुरू होने वाला है उसकी जो एक प्रैक्टिस है वो थोड़ी सी प्रैक्टिस सेशन वाला जो दौर था हमारे इस लवी ज़िंदगी कार्यक्रम में करने की हमने कोशिश की है। चलिए वक्त हो रहा है समाचारों का और 6:05 पर समाचारों के बाद आप सुनेंगे अंदाज़े बयां। 6:15 पर मेरे साथ सुनते रहिए FM रेनबो।

रूप कुमार राठौर की बहुत ही खूबसूरत गाई हुई ये गज़ल दोस्तों अभी आप सुन रहे थे। जानिसार अख्तर के बोल और इतनी बारीकी और महीनियत के साथ लिखना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे जब हम अपने दिल के एहसासातों को शब्दों में बयां करने की कोशिश करते हैं तो अमूमन हमको नाकामयाबी ही हाथ आती है, लेकिन किसी ख़ास एहसास को, किसी भावना को शब्दों में बयां कर पाना और उसकी बारीकी को भी महीनता से शब्दों में व्यक्त करना बहुत बड़ा स्किल होता है और ये सभी को नहीं आता, और जिनको आता है वो हमारे सिरमौर होते हैं। वैसे जो छोटी छोटी बातें हमें ऐसे लगता है कि शायद हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उनमें भी कितना गहरा अर्थ होता है। या फिर यूँ कह लीजिए कि हमारे जो स्वभाव का एक लहजा होता है, उसकी एक अपनी लय होती है, उसको भी ये शायर, ये कवि बड़ी बारीकी से पकड़ लेते हैं और फिर बन जाती है खूबसूरत शायरी।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: गजल शेख आदम अबू वाले की लिखी हुई है।

अब क्यों बदल भी जाते हो हालात की तरह। इतनी महीन शायरी जब कानों से उतरकर दिल में छा जाती है तो जो शब्दों का वजूद है और उनसे निकला जो भावनाओं का व्यक्तित्व है वो सामने आ जाता है, हमारे मानस पटल पर छा जाता है। यही वो ताकत है शायरी की।

तलत अजीज़ की गाय हुई इस गज़ल के साथ हमारा आज का अंदाज़े बयां कार्यक्रम बस यहीं तक है। 6:58 हो रहे हैं, ठीक 7 बजे आप सुनेंगे मराठी समाचार और तत्पश्चात आपका पसंदीदा कार्यक्रम होगा हम तुम। जी हाँ, आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसमें आप अपनी फरमाइशें सुनते हैं। तो इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए, इसमें सहभागी होने के लिए आपको क्या करना होगा, आइए आपको बता देते हैं। आपको पता ही होगा, लेकिन जो हमारे नए लिसनर्स हमारे साथ जुड़ते हैं उनके लिए ये बताना ज़रूरी है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि यदि आपको इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश सुननी है तो आपको हम जो व्हाट्सएप नंबर देंगे उस व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज भेजना है। मैसेज में क्या लिखना है, आपको जिस जो फिल्म है जिसका गाना सुनना है उस गाने के बोल, फिल्म का नाम, आपका नाम, आप कहाँ से हैं, ये सारी जानकारी फटाफट से हमें व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 8657661071 8657661071। चलिए वक्त हो रहा है समाचारों का और तत्पश्चात 7:10 पर मिलते हैं हम तुम कार्यक्रम में।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 107.1 MHz पर यह है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल. एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1000 चम्मच

40 किलो हर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर सुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने मोबाइल पर न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर यह कार्यक्रम इस वक्त सुन सकते हैं। शाम के 7:10 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम तुम, आपका पसंदीदा कार्यक्रम हम तुम। एक बार फिर से माया आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती है। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप जानते ही हैं मैंने कार्यक्रम अंदाजे बयां में आपको बता ही दिया है कि किस प्रकार से आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आज वक्त हमारे पास कम है क्योंकि 7:30 पर हमारे साथ हम होगा प्रायोजित कार्यक्रम फार्म टू सिटी, इसलिए बिल्कुल आधा घंटा ही हमारे पास है। और पहले जो कुछ एंट्रीज हैं, पहले जो कुछ मैसेजेस हैं, वही हम कार्यक्रम में शरीक कर पाएंगे, इसलिए मैं फिर से वो जो पूरी प्रोसेस है वो नहीं दोहराऊंगी। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं। सबसे पहला मैसेज यश शिंदे ने सांगली से भेजा है। आज अमिताभ जी का बर्थडे है तो उन्होंने बच्चन साहब के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज भेजा है। आप की जिंदगी रहे हमेशा आनंद और उल्लास से भरपूर, आए ना कभी कोई सिलसिला किसी दर्द का या सुरूर, दुआ है रब से रहे आपका दीवार सा मजबूत हर एक अरमान, पूरी दुनिया गाए आपके अभिनय के शोलों सा गुनगान, आपकी शख्सियत है ऐसी जैसे शहंशाह का कोई रूप, आपकी मुस्कान से खिल उठे जैसे सिलसिला धूप, न कभी कम हो आपका जंजीर जैसा ये जोश और प्यार, सलामत रहे हमेशा आपका ये बागबान सा परिवार। बहुत खूबसूरत यश शिंदे जी, मर्द फिल्म का माँ शेरावाली ये गीत आपको सुनना है। गीत बहुत बड़ा है, कार्यक्रम में वक्त कम है, इसलिए हम बिल्कुल थोड़ा सा ही गीत आपको सुनाएंगे। आशा है आप मजबूरी को ज़रूर समझेंगे। यश जी, ये गाना आपकी फरमाइश का।

अगली फरमाइश हम तक पहुंची है पुणे से राकेश माथुर जी की, द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से आशा भोसले और किशोरदा का गाया हुआ ये गीत आप सुनना चाहते हैं।

चलिए लगभग 7:25 हो रहे हैं और हम तुम कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश हम लेते हैं नीलेश्वर नगर महाराष्ट्र से निर्मला विशाल और पीएस नावकर जी की। अंधा कानून फिल्म से किशोर दा का गाया हुआ ये गीत आप सुनना चाहेंगे।

दोस्तों, किशोरदा के गाए हुए इस गीत के साथ ही हमारा आज का हम तुम कार्यक्रम बस यहीं तक ही। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम फार्म टू सिटी।

0: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
1: पर हम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: श्रोते हो, आजच्या फार्म टू सिटी या कार्यक्रमात मी स्वप्निता शिंदे
4: आणि मी प्रफुल्ल आचरेकर
3: तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करत आहोत। प्रफुल्ल।
4: हा स्वप्निता।
3: अरे काल मी बाजारात गेले होते ना, तर खूप साऱ्या बाय

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: श्रोते हो, आताच आपण ऐकलात कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम फार्म टू सिटी। या कार्यक्रमाचे सादरकर्ते होते रोशन जाधव हो।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत की प्रगति को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों से प्रेरित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश युवाओं को अपार अवसर प्रदान कर रहा है। देश के विकास के लिए युवाओं से अपनी क्षमताएं पहचानने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों की अवैध हिरासत रोकने और सुचारू यातायात जारी रखने के निर्देश दिए। भारत ने नई दिल्ली में हुई घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की टिप्पणियां खारिज की। इसे दोहरा मापदंड और अपने आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। नेपाल की बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ से गोरखा जिला प्रभावित। अब तक 80 लोगों को बचाया गया और 5 लापता। काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
2: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
1: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूर्णमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती हुई चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में ये समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
2: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल।

0: टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
0: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
0: भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। हम 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी का सपना भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले वर्षों में जब दुनिया के बड़े स्पोर्ट्स इवेंट भारत में होंगे, इसलिए भारत के युवाओं के पास अब प्लेटफॉर्म भी है, पोटेंशियल भी है और सपोर्ट भी है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियां खारिज कर दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार दखलअंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
2: We have seen certain remarks.
3: हमने कल की घटनाओं के बारे में मानवाधिकार उच्च आयुक्त के कार्यालय की कुछ टिप्पणियों को देखा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां शांतिपूर्ण सभा करने के अधिकार की गारंटी संविधान में दी गई है। हमारे मजबूत संस्थान, स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया इस अधिकार को सुरक्षित रखते हैं। हर लोकतंत्र की तरह भारतीय नागरिक सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस अधिकार का प्रयोग करते हैं।
2: पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर बिमोल अकोयजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर कांग्रेस की आलोचना की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बिमोल अकोयजम की सेवाएं समाप्त कर दी थीं। नई दिल्ली में पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए।
4: जेएनयू ने पॉश एक्ट के तहत एक इंटरनल कमिटी बिठाई। इस कमिटी ने तमाम सबूतों, तमाम विटनेसेस और तमाम सर्वाइवर्स की विटनेस टेस्टिमनी के बाद, सारे के सारे तथ्यों की जांच करने के बाद तुरंत बिमोल अकोयजम को नौकरी से बर्खास्त किया। फेमिनिज्म कांग्रेस पार्टी के लिए केवल एक हैशटैग से शुरू होता है और जवाबदेही की दहलीज पर आकर समाप्त हो जाता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जन सेवा से देश सेवा इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण के साथ भारत सरकार को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज विशेष श्रृंखला में बात औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति के लिए की जा रही पहल की।
5: पिछले कुछ वर्षों में सरकार धीरे धीरे भारत से ब्रिटिश शासन की निशानियों को हटाने की दिशा में काम कर रही है। 15 अगस्त 2022 को 76वें स्वतंत्रता दिवस

0: के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्षों के लिए 5 संकल्पों यानी पंच प्रण की घोषणा की थी। दूसरे प्रण के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकों के जीवन के किसी भी हिस्से में, यहाँ तक कि उनके मन के सबसे गहरे कोने या उनकी आदतों में भी गुलामी का कोई अंश नहीं होना चाहिए।
1: सैकड़ों साल की गुलामी ने जहाँ हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी।
0: देश को उपनिवेशिक विरासत से मुक्त करने और एक अलग भारतीय पहचान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई क्षेत्रों में कई कदम उठाए हैं। नई दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। भारतीय नौसेना ने पुराने ध्वज जिसमें सेंट जॉर्ज क्रॉस बना हुआ था की जगह वर्ष 2022 में अपना नया ध्वज अपनाया। सरकार ने वर्ष 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। इसके साथ ही वर्ष 1924 से चली आ रही एक परंपरा समाप्त हो गई। बीजेपी नेता राम माधव ने कहा,
2: वी लिव्ड एज अ नेशन,
3: हम कम से कम 5000 वर्षों से एक राष्ट्र के रूप में जी रहे हैं। इतने लंबे इतिहास में हमने एक महान राष्ट्र, महान इतिहास, महान स्मारक, महान ऐतिहासिक स्थल बनाए हैं। वे सहस्त्राब्दियों से भारत की पहचान रही है। महान पहचान आज यही हो रहा है, यही वह है जिसे हम औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति कहते हैं,
2: डीकॉलोनाइजेशन।
0: सरकार ने ब्रिटिश शासन के दौरान प्रतिबंधित साहित्य को फिर से सामने लाने का भी प्रयास किया है। इसके तहत भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिबंधित कविताओं, लेखों और प्रकाशनों की एक सूची तैयार कर रहा है। ये सभी पहल एक ऐसे आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र उत्सव आज पूरे देश में धार्मिक उत्साह और भक्तिभाव के साथ शुरू हो गया है।

देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रमुख मंदिरों में पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा लोगों को आत्मानुशासन और नैतिक मूल्य स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। ये महोत्सव नारी के सामर्थ्य, साहस और दृढ़ता में विश्वास को मजबूत करता है। भारत में त्योहारी खरीदारी सीजन की शुरुआत जोरदार रही। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने फेस्टिव सीजन में पहले 2 दिनों में करीब 24,000 करोड़ रुपए की बिक्री की है। इस दौरान लोगों ने स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरणों और फैशन उत्पादों की जमकर खरीदारी की। त्योहारी सीजन के पहले 2 दिन की बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 6 गुना अधिक है। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ के बाद अब तक 9 विदेशी नागरिकों सहित 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। 5 लोग अब भी लापता हैं। आज सवेरे लगभग 4 बजे आई बाढ़ में घर और पुल बह गए और कई जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण आपातकाल घोषित कर दिया है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने प्रांत में संवैधानिक व्यवस्था के विफल होने पर आपातकाल लागू किया। इस कदम से पाकिस्तान की संघीय सरकार को मुख्य कार्यकारी और विधायी शक्तियां अपने हाथ में लेने का अधिकार मिल गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन ऊर्जा केंद्रों पर हमले रोकने के लिए सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उन्होंने दोनों देशों से समझौते का पालन करने का आग्रह किया। इस बीच रूस और यूक्रेन दोनों ने ही युद्ध विराम पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। सऊदी अरब के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। इस बीच विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास घायल

0: घायल 11 भारतीयों की मदद के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। दूतावास उनकी सहायता के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब जीता। अनमोल खरम ने तुर्की इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। अनमोल ने फाइनल में आकर्षी कश्यप को हराया। इंदौर में भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 224 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 10 विकेट पर 223 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने सर्वाधिक 69 रन बनाए। 5 मैच की श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बिजली चमकने के साथ बरसात होने और तेज हवा चलने का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत की प्रगति को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों से प्रेरित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश युवाओं को अपार अवसर प्रदान कर रहा है। देश के विकास के लिए युवाओं से अपनी क्षमताएं पहचानने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों की अवैध हिरासत रोकने और सुचारू यातायात जारी रखने के निर्देश दिए। भारत ने नई दिल्ली में हुई घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की टिप्पणियां खारिज की। इसे दोहरा मापदंड और अपने आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। और काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth over 13,000 crore rupees in Tamil Nadu, stresses India's progress draws strength from rich cultural heritage and scientific achievements. Prime Minister Modi asserts India offers immense opportunities for youth, urges them to realize their potential for nation's development. Supreme Court directs authorities to ensure unrestricted movement of people and peaceful gatherers are not illegally detained. India rejects UN Rights Body's remarks on New Delhi events, cites double standards and unwarranted interference in its internal affairs. Flash floods hit Gorkha district of Nepal, 80 people rescued so far, 5 missing. An Indian shooter Uday Veer Sidhu wins the gold in men's 10-meter air pistol event at ISSF World Cup in Cairo. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said India's progress draws strength from its rich cultural heritage, scientific achievements and modern infrastructure. The Prime Minister was speaking after inaugurating and laying foundation stones of development projects worth over 13,000 crore rupees across Tamil Nadu at an event held at IIT Madras today. The projects span road and rail transport, port infrastructure, petroleum and scientific research.
2: This is a historic day for Tamil Nadu. Today's program involves projects worth 13,000 crore rupees. We are inaugurating many completed projects and laying foundations for new ones. Some will make daily travel easier. Others will strengthen industry and trade. Together, they will create jobs for young people across Tamil Nadu. I congratulate the people of the state on this occasion.
1: Recalling his interactions with former Tamil Nadu chief ministers, the Prime Minister said that despite changes in governments, his commitment to the development of Tamil Nadu and the welfare of its people had remained unchanged. The Prime Minister cited Tamil Nadu's temples, scientific institutions and metro rail network as examples of how tradition and modern development can go hand in hand. The Prime Minister also extended Navaratri greetings to the people of the state. Earlier in the day, Mr. Modi inaugurated the Poonamalli Vada Palani stretch of Phase 2 of the Chennai Metro Rail project, built at a cost of around 4,900 crore rupees. The Prime Minister and Chief Minister C. Joseph Vijay jointly flagged off the new metro services and

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
2: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
1: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
2: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रोत्सव आज पूरे देश में धार्मिक उत्साह और भक्तिभाव के साथ शुरू हो गया। देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रमुख मंदिरों में पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सऊदी अरब में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। नेपाल में गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में आज सुबह अचानक आई बाढ़ से अनेक घर और पुल बह गए। किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण

पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ, मोड़ कोई भी हो, जब जिंदगी को शुरू करना होता है तो हर इंसान सोच कर आगे बढ़ता है। लेकिन जब गजल की बात हो दोस्त, तो गजल का नाम आते ही हमारे जहन में मोहब्बत, जुदाई, इंतजार और दर्द के ख्याल आने लगते हैं। लेकिन क्या गजल सिर्फ इश्क और मोहब्बत की दास्तान है? क्या उसका दायरा सिर्फ महबूब की जुल्फों, आंखों और अदाओं तक ही महदूद है? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं।

क्योंकि गजल दरअसल इंसानी जिंदगी का आईना है। इसमें मोहब्बत भी है, तन्हाई भी है, समाज की सच्चाई भी है और इंसान के अंदर उठने वाले सवालात भी मौजूद हैं। गजल जब मुआशरे के हालात को आवाज देती है ना दोस्तों, तब वो सिर्फ दिल बहलाने का जरिया नहीं रहती बल्कि समाज को सोचने और समझने की सलाहियत फराहम करती है। लौटती हूँ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर इस प्रोग्राम में दोबारा से एक प्यारे से ट्रैक को आप तक पहुँचाऊंगी, एक प्यारी सी गजल आप तक पहुँचेगी और उसके बाद इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम ये सोचकर गजल में शमूलियत का हक नहीं देते कि ये तो गजल का मौजू नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। गजल में हर वो चीज़ शामिल है जो इंसानी जिंदगी से होकर गुजरती है। बने रहिए मेरे यानी हिना मौज के साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। ये खूबसूरत सा ट्रैक और गजल आपके लिए।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: दिल्ली टूरिज्म लेकर आ रहा है डांडिया रीबॉर्न। दिल्ली के संग ढोल की थाप, डांडिया की धूम और नवरात्रि के रंग। 11 और 12 अक्टूबर 2026 शाम 5 से रात 10 बजे तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गेट नंबर 14। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता और पर्यटन मंत्री श्री कपिल मिश्रा जी के साथ इस
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ, ऐसे मौसम में जब गज़ल बनती है तो वो कहीं ना कहीं आसपास महबूब के ही घूमती है, मोहब्बत के हर कोने को छू कर गुजरती है। 11:22:32 हिना मौज के साथ हैं आप रंगे महफिल प्रोग्राम में आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। दोस्तों, हमने कहा था कि आपको हम समझाते हैं कि किस तरीके से गज़ल सामाजिक तकाजे जो होते हैं उन्हें पूरा करती है। सबसे पहले बात करते हैं समाज की अच्छाई की। मुआशरे में जो अच्छाई है, मुआशरे में इंसानी रिश्तों में आती जो दूरियां हैं उनको कहीं ना कहीं एक मसला समझा जाता है, और उस मसले पर भी गज़ल में बहुत सारी चीज़ें मौजूद आपको मिलेंगी। एक हसास शायर इन हालात को महसूस करता है और अपने एहसास जो होते हैं इससे मुतालिक उनको शेरों में ढाल देता है। और गज़ल की खासियत यही है दोस्तों कि वो बहुत कम लफ्ज़ों में बड़ी बात कह देती है। कभी एक शेर समाज की पूरी तस्वीर हमारे सामने रख देता है तो कभी चंद अल्फाज हमारे जहन में ऐसे सवाल पैदा कर देते हैं जिन पर हम देर तक सोचते रहते हैं। लेकिन दूसरी अहम बात यह है कि इंसानियत का पैगाम आपको देखने को मिलेगा गज़ल के अंदर। गज़ल में दूसरों के दर्द को महसूस करना हमें सीखने को मिलता है। हर शायर किसी मजदूर की मजदूरी, किसी गरीब की बेबसी, किसी माँ की परेशानी या किसी अकेले इंसान की तन्हाई को भी बयान करने की पूरी सलाहियत रखता है। दोस्तों, दरअसल मुआशरे के अंदर हमदर्दी को ज़िंदा रखने की कोशिश एक शायर की रहती है। गज़ल मुआशरे की बुराइयों पर सवाल उठाने का काम भी करती है, और गज़ल कई शायरों की इस तरीके की लिखी हुई चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पेश भी करती है। आम आदमी की परेशानियों से जुड़े सवालों को ख़ास अंदाज में सामने रखा जाता है गज़ल के ज़रिए। शायरी बताती है कि गज़ल सिर्फ महफिल में वाह वाह बटोरने के काम नहीं आती दोस्तों, बल्कि लोगों के दिल और जहन को झकझोरने के लिए भी कही जाती है। क्योंकि जब हाथ आपके छूट भी जाते हैं तो रिश्ते जो हैं वो कभी नहीं छूटते।

11:30 11 सेकेंड हिना मौज है आपके साथ प्रोग्राम रंग महफिल में, और ये रंग महफिल प्रोग्राम गज़ल में उन चीज़ों को ढूंढने के लिए आज हम कर रहे हैं जो गज़ल से अक्सर हम दूर महसूस करते हैं। गज़ल को हम सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत, इश्क, इसके आसपास महसूस करने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन गज़ल बहुत वसी पैमाने पर अपने अंदर बहुत कुछ समोए हुए रहती है।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

11:47 और ये प्रोग्राम चल रहा है रग महफिल हिना मौज के साथ हैं आप। हम बात कर रहे हैं समाजी तकाजों से मुतालिक। समाज यानी मुआशरा दोस्तों, गज़ल और इसका बहुत ही गहरा एक ताल्लुक़ है। मुआशरा गज़ल को मौजू देता है और गज़ल समाज को यानी मुआशरे को सोचने का नया नज़रिया दे देती है। जब शायरी अपने वक्त की सच्चाइयों से जुड़ती है दोस्तों, तब वो महज अदब नहीं रहती बल्कि मुआशरे की आवाज़ बन जाती है। और इसी खूबसूरत से ख़याल को जब हम अपने जहन में बाज़गश्त करने देते हैं, तब लगता है कि गज़ल को सिर्फ हम सुनते नहीं हैं, उसे अंदर से महसूस करते हैं। एहसास व जज्बात, उसके अंदर से उठते हुए सवाल, उन सबको समझने की हमारी कोशिश रहती है, क्योंकि वो हमारा ही हिस्सा होते हैं, हमारे ही समाज का हिस्सा होते हैं। कभी कभी बहुत सारे लोगों की भीड़ में इंसान अकेला महसूस करता है, उस वक्त भी गज़ल हर उस चीज़ को बयान करने की अपने अंदर ताकत रखती है जो हम अपने लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकते, एक आम इंसान नहीं कर सकता। वो एक शायर लफ्ज़ों का जामा पहनाकर उस सिचुएशन को भी बहुत खूबसूरती से बयान कर देता है। सुनिए।

चलते चलते बस यही कहूँगी कि हमें उम्मीद है कि शायरी की ये रोशनी हमारे माशरे को इंसानियत, मोहब्बत और इंसाफ के जज्बे को मजबूत करने का हमेशा मौका फराहम करती रहेगी। अच्छी गज़ल वो नहीं है दोस्तों जो सिर्फ दिल को छू जाए, बल्कि वो है जो दिल को छूकर इंसान की सोच में बदलाव ले आए। चलते चलते एक और प्यारी सी गज़ल आपके लिए, मुझे यानी हिना मौज को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी इस उम्मीद के साथ। रुख्सत तलब करती हूँ, खुदा हाफिज़, शब खैर।

बहुत खूबसूरत रंगे महफिल के बाद आप सभी का स्वागत है। अगले दिन के वक्त के हिसाब से कैलेंडर का दिन चेंज हो चुका है जनाब, और 00:00 दिखाई दे रहे हैं और वक्त है 0 आवर्स का। लेकिन उससे पहले एक और ज़रूरी चीज़ जिसका ये वक्त हो चला है, और वो है

मुख्य समाचार इस घंटे के अब तक के। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निकाय द्वारा नई दिल्ली की घटनाओं पर की गई टिप्पणियों को खारिज किया। इसे दोहरा मापदंड और आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप भी बताया। सऊदी अरब में रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत। भारत ने हवाई अड्डे पर बार बार हमलों की निंदा की। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने आपातकाल लागू होने के बाद खैबर पख्तूनवा में चुनी हुई प्रांतीय सरकार को बर्खास्त कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की सरकार थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में आईआईटी मद्रास में आयोजित कार्यक्रम में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। रेलवे ने बड़े पैमाने पर नौकरियों के लिए आवेदन आमंत्रित करने की घोषणा की है। रेलवे भर्ती बोर्ड केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना के तहत कुल 3,548 रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 नवंबर तक किए जा सकते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति 2047 का मसौदा जारी किया है। इसमें भारत की कच्चे स्टील की उत्पादन क्षमता को मौजूदा लगभग 220 मिलियन टन से बढ़ाकर 2047 तक 604 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है। देवी दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय पर्व नवरात्र धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्र पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और सतत स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए दुर्गा ड्राइविंग उत्थान और रोजगार ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दिल्ली सरकार ने खिलाड़ियों के लिए मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 9,75,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में उदयवीर सिद्धू ने स्वर्ण पदक जीता और इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, और इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं हमारी ऐप न्यूज ऑन एयर के जरिए भी। देश और दुनिया के हर कोने हर हिस्से से जुड़ने के लिए अगर आपने डाउनलोड नहीं की है ये ऐप तो जनाब अभी कर लीजिए। और अब वक्त हो चला है प्रोग्राम जीरो आवर्स का, मेरे यानी रजत के साथ इन्हीं फ्रीक्वेंसीज पर, इन्हीं मीटर्स पर आकाशवाणी रेनबो 102.6। आप सभी का तहे दिल स्वागत, मैं हूं आपका दोस्त रजत। एक बार फिर से आप सभी को त्योहारों की शुभकामनाएं, हर दिन की शुभकामनाएं, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। बने रहिए, हर शो सुनिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके लिए बहुत कुछ है हमारे पास हुजूर। बस इस्तकबाल एक बार फिर से आप सभी का।

0: शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी के मस्त

0: तरह का सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियां सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निकाय द्वारा नई दिल्ली की घटनाओं पर की गई टिप्पणियों को खारिज किया। इसे दोहरा मापदंड और आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। सऊदी अरब में रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत। अस्पताल में 5 घायल भारतीयों की हालत स्थिर। भारतीय दूतावास लगातार उनके संपर्क में है। भारत ने हवाई अड्डे पर बार बार हमलों की निंदा की है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने आपातकाल लागू होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में चुनी हुई प्रांतीय सरकार को बर्खास्त कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की सरकार थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में आईआईटी मद्रास में आयोजित कार्यक्रम में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। रेलवे ने बड़े पैमाने पर नौकरियों के लिए आवेदन आमंत्रित करने की घोषणा की है। रेलवे भर्ती बोर्ड केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना के अनुसार

कुल 3548 रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 नवंबर तक किए जा सकते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति 2047 का मसौदा जारी किया है। इसमें भारत की कच्चे स्टील की उत्पादन क्षमता को मौजूदा लगभग 220 मिलियन टन से बढ़ाकर 2047 तक 604 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और सतत रोजगार को बढ़ावा देने के लिए दुर्गा ड्राइविंग, उत्थान और रोजगार ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। देवी दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय पर्व नवरात्र धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ शुरू हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्र पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में उदयवीर सिद्धू ने स्वर्ण पदक जीता और इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराया। तो ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रेनबो पर आइए अब आपको लेकर चलते हैं सुहानी रात के सफर पर। जी हाँ, कार्यक्रम है सुहानी रात। लेते हैं कुछ बहुत ही मधुर और रात के लिए बिल्कुल मुफीद गीतों का आनंद।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर। मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

घड़ी में बजे हैं ठीक दो और वक्त हो चला है अब तक के मुख्य समाचारों का आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निकाय द्वारा नई दिल्ली की घटनाओं पर की गई टिप्पणियों को खारिज किया, इसे दोहरा मापदंड और आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। सऊदी अरब में रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। अस्पताल में 5 घायल भारतीयों की हालत स्थिर, भारतीय दूतावास लगातार उनके संपर्क में है। भारत ने हवाई अड्डे पर बार बार हुए हमलों की निंदा की है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने आपातकाल लागू होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में चुनी हुई प्रांतीय सरकार को बर्खास्त कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की सरकार थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में आईआईटी मद्रास में आयोजित एक कार्यक्रम में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। रेलवे ने बड़े पैमाने पर नौकरियों के लिए आवेदन आमंत्रित करने की घोषणा की है। रेलवे भर्ती बोर्ड केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना के अनुसार कुल 3,548 रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 नवंबर तक किए जा सकते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति 2047 का मसौदा जारी किया है। इसमें भारत की कच्चे स्टील की उत्पादन क्षमता को मौजूदा लगभग 220 मिलियन टन से बढ़ाकर 2047 तक 604 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और सतत स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए दुर्गा ड्राइविंग, उत्थान और रोजगार ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। देवी दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय पर्व नवरात्र धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ शुरू हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्र पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में उदयवीर सिद्धू ने स्वर्ण पदक जीता और इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6।

श्रोताओं, समय हो चला है 2:02 और ये समय है हमारे नियमित कार्यक्रम भुलायना बने का। भुलायना बने में हम लेकर आते हैं रंग बिरंगे गीत जो अभी तक हमारे आपके जहन से उतरे नहीं है, जिन्हें हम भूल नहीं पाए हैं, जिन्हें आसान नहीं है भुलाए जाना। ऐसे ही गीतों का, खूबसूरत गानों का, खूबसूरत लम्हों का एक शानदार गुलदस्ता कहना चाहिए गुलजार के साथ हम लेकर आए हैं आपके लिए इस खूबसूरत प्रोग्राम में, इस हसीन और तरीन प्रोग्राम में जिसका नाम है भुलाना बने। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर मेरे यानी रजत के साथ आप जुड़े हैं और इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं देश और दुनिया के हर हिस्से में, क्योंकि हमारे पास है और आपके पास है न्यूज ऑन एयर ऐप। तो जुड़े रहिए दोनों के माध्यम से, ऐप के माध्यम से भी और फ्रीक्वेंसी के जरिए भी जहां तक इसकी जद है, और हमारे साथ भी, क्योंकि आपकी पहुंच हम तक तो सीधे है हुजूर। आप सभी का एक बार खूबसूरत प्रोग्राम में स्वागत है, इस्तकबाल है, आप सभी का अभिनंदन प्रोग्राम भुलाए ना बने में मेरे यानी रजत के साथ।

0: पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर प्रस्तुत है मुख्य समाचार। भारत में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निकाय द्वारा नई दिल्ली की घटनाओं पर की गई टिप्पणियों को खारिज किया। इसे दोहरा मापदंड और आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। भारत ने हुर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में दो वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की है। एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला हुआ, जिसमें सवार 11 भारतीय नाविकों में से दो लापता बताए जा रहे हैं, जबकि मार्शल द्वीप में टैंकर एमटी वोल्थेरा पर किसी अज्ञात चीज से हमला हुआ, जिससे उसमें आग लग गई। एमटी वोल्थेरा पर सवार सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। सऊदी अरब में रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत। अस्पताल में 5 घायल भारतीयों की हालत स्थिर। भारतीय दूतावास लगातार उनके संपर्क में है। भारत ने हवाई अड्डे पर बार बार हमलों की निंदा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन 4.5 साल से चल रहे युद्ध में एनर्जी सीज फायर यानी ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े हमलों को रोकने पर सहमत हो गए हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने आपातकाल लागू होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में चुनी हुई प्रांतीय सरकार को बर्खास्त कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की सरकार थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में आईआईटी मद्रास में आयोजित कार्यक्रम में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकासी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। रेलवे ने बड़े पैमाने पर नौकरियों के लिए आवेदन आमंत्रित करने की घोषणा की है। रेलवे भर्ती बोर्ड केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना के अनुसार कुल 3,548 रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 नवम्बर तक किए जा सकते हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और सतत स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए दुर्गा ड्राइविंग उत्थान और रोजगार ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। और इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराया। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

आकाशवाणी रिनबो पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज। अब से कुछ ही पल में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए मुख्य समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निकाय द्वारा नई दिल्ली की घटनाओं पर की गई टिप्पणियों को खारिज किया। इसे दोहरा मापदंड और आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में दो वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की है। एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला हुआ जिसमें सवार 11 भारतीय नाविकों में से दो लापता बताए जा रहे हैं, जबकि मार्शल द्वीप में टैंकर एमटी वॉलेट थिरा पर किसी अज्ञात चीज से हमला हुआ जिससे उसमें आग लग गई। एमटी वॉलथेरा पर सवार सभी 11 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। सऊदी अरब में रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत। अस्पताल में 5 घायल भारतीयों की हालत स्थिर। भारतीय दूतावास लगातार उनके संपर्क में है। भारत ने हवाई अड्डे पर बार बार हमलों की निंदा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन 4.5 साल से चल रहे युद्ध में एनर्जी सीजफायर यानी ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े हमलों को रोकने पर सहमत हो गए हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने आपातकाल लागू होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में चुनी हुई प्रांतीय सरकार को बर्खास्त कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में प्रांत में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की सरकार थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में आईआईटी मद्रास में आयोजित कार्यक्रम में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। रेलवे ने बड़े पैमाने पर नौकरियों के लिए आवेदन आमंत्रित करने की घोषणा की है। रेलवे भर्ती बोर्ड केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना के अनुसार कुल 3,548 रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 नवम्बर तक आमंत्रित कर रहा है। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और सतत स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए दुर्गा ड्राइविंग उत्थान और रोजगार ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। और इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराया। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

बहुत स्वागत है आप सभी का। 4:07 और कुछ सेकंड्स भी हो चुके हैं और वक्त हो चला है हमारे कार्यक्रम सारे गामा का। सारे गामा का वक्त हो ही नहीं चला है, हो चुका है। और आप एक गाना खूबसूरत आवाज़ में किशोर कुमार साहब की सुन भी चुके हैं। इससे आगे का सफ़र अब हम आगे जारी रखेंगे। आप हैं मेरे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, मैं हूं रजत। गीत संगीत के साथ साथ हमें कुछ संदेश देते हैं जो गाने हैं, खूबसूरत फनकारी का आज इतने सालों बाद भी सबब बने हुए हैं, वजह बने हुए हैं। और हमारे और आपके बीच के जो तमाम रिश्ते हैं ना, उन सब की भी पहचान है ये, या यूं कहें कि उनका आधार है ये। तो आप गानों को पसंद करते हैं, इस वक्त हल्के फुल्के गाने सुनना चाहते हैं, तो ज़रूर आइए हमारे साथ इस महफिल में जो सुबह के 4 से सजनी शुरू हो जाती है और चलेगी अभी करीब करीब 40-45। इसके बाद आप भक्ति संगीत का लुत्फ उठाएंगे, आराधना में ईश्वर को धन्यवाद देंगे उन सभी धरोहरों के लिए जो हमें उनसे मिली हैं। उनमें से एक है ये गीत संगीत। और जब यहाँ हिंदी फिल्म संगीत की बात होती है तो मैं आज की तो नहीं बात करता, लेकिन एक लंबा अरसा है जो हमारे हिंदी फिल्म गीतों के जरिए हमने जिया है। हमारे फिल्मी गानों ने हमें एक लंबे युग की पहचान दी है और आज भी वो संगीत जिंदा है, लेकिन आज उसकी काया कुछ बदली सी नजर

0: जहाँ ये उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा था, नई नई ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा था, सारे गामों में मैं कोशिश करता हूँ उन गानों को लाने की। तो इस कोशिश को हम बढ़िया अंजाम तक पहुंचाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे खूबसूरत गाने जैसे भी आपने सुना। मेरे साथ हैं आप सारेगामा प्रोग्राम में, मैं हूं रजत। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन इस शानदार प्रोग्राम में जिसे हम लाते हैं FM रेनबो 102.6 के जरिए आप सभी तक पहुँचाते हैं, चाहे आप कहीं भी रहते हो। अब तो देश ही नहीं विदेश की भी बात करते हैं, जहाँ जहाँ से हम सुने जाते हैं, और आपके मोहब्बत भरे पैगाम भी हमें 9868107070 पर मिलते रहते हैं। अगर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम। मेरे यानी रजत के साथ जुड़े हैं आप रेनबो की इस खास महफिल में जिसे हम सब कहते हैं सारेगामा।
1: मंगल भवन मंगल हारी
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

के तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।